पौड़ी आपे ही करना क्यों कला पे ही तै तारी है। देख है कि तै अपना तर कच्ची पक्की सारी है। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। जिसके जी प्राण है क्यों साह मनो विसारी है। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਕੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ

0: पुतली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स, अति डीटीएचडी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। ज्ञान अमृत।

हुने तुसी सुन रहे से प्रोग्राम खेती बाड़ी मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। आओ हुन सरवन करदे हां मानस गान दा 100वां पाग।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

हुने तुसी सरवन कर रहे सी बानस गांदा सौमा पाग मीडियम वीव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ दे ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है परिचय

0: परिचय ते ताओ हुन तुहानू जानकारी दे दिए अज रात तक प्रसारित किते जान वाले प्रोग्राम्स दी। सवेरे 7:02 ते तुसी सुनोगे प्रोग्राम सोनी सवेर, पंजाबी फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम महक पंजाब दी तुसी सुनोगे सवेरे 8:40 ते। उस तो बाद सवेरे 9:02 ते तुसी सुनोगे जी आकाशवाणी जलंधर ते प्रोग्राम विभाग अते खेतरी समाचार इकाई दी सांझी पेशकश विचार चर्चा मिशन लाइफ। इस च भाग लैण वाले ने श्रीमती सविता सिंह, इंजीनियर लुपेंद्र कुमार ते संचालक राजेश चंद्र बाली। उस तो बाद 9:30 तुसी सुनोगे जी गजलां। उस तो बाद सवेरे 10:02 ते तुसी सुनोगे अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम हैलो फरमाइश। इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकते हो, दिले तुसी नंबर डायल करना है 0181-2342-173। 11:05 ते समा रहेगा जी प्रोग्राम धमक जलंधर पेंदी दा। उस तो बाद 12:05 ते पेश करनगे प्रोग्राम वसदे वेड़े। इस चार तुसी मेरी कलम तो कहानी सुनोगे किरणदीप कौर होरा पासों। सांझ तुसी आत्म निर्भर सोच अते आर्थिक दबाव विषय ते एडवोकेट गौरव छाबड़ा होरा पासों दित्ती जानकारी सुनोगे। फौजी वीरां लई प्रोग्राम दोपहर 1:15 पेश कीता जावेगा। बाद दोपहर 2:30 तुसी सुनोगे प्रोग्राम रंगली धरती। इस चाज तुसी रमजीत कौर परमजीत कौर दे गीत सुनोगे। दूजी सभा च 4:02 ते तुसी सुनोगे सदा बहार गीत। शाम 4:30 तुसी सुनोगे श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सिद्धा प्रसारण तुसी सर्वन करोगे। शाम 5:30 तुसी सर्वन करोगे गुरवानी विचार। देहाती प्रोग्राम होवेगा जी शाम 6:30। इस गल होवेगी काम दिया गल्ला अज दे पाप दी। शाम 7:10 ते तुसी साड़ी दिल्ली केंद्र तो विशेष कार्यक्रम इंफ्रास्ट्रक्चर सुनोगे। शाम 7:50 ते तुसी सुनोगे हिंदी वार्ता मेरी नई कहानी ते पेश करनगे कमलेश गुप्ता ते शीर्षक होवेगा सफलता की माप। उस तो बाद रात 8:00 तुसी सुनोगे अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। रात 9:00 तुसी सुनोगे न्यूज़ एट 9, 9:15 तुसी सुनोगे स्पॉटलाइट ते 9:30 तुसी सुनोगे चर्चा का विषय। ये तीनों प्रोग्राम साड़ी दिल्ली केंद्र तो प्रसारित किए जाएंगे। रात 10:02 ते तुसी सुनोगे अपना मन पसंदीदा प्रोग्राम तुहाड़ी फरमाइश। सो ऐसी अज रात तक प्रसारित किए जाने वाली प्रोग्राम्स का वेरवा। हुण तुसी साड़ी दिल्ली केंद्र तो सुनोगे संस्कृत समाचार।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य भारतस्य दीर्घतमः निर्वाचितः प्रधानमंत्री अभवत्। श्रीमोदी 14,2000 मई मासस्य 26 दिनांके कार्यभारं स्वीकृतवान् आसीत्। असौ पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्येतस्य समयं अतिक्रमितवान् यः प्रथमवारं 25,1900 मई मासस्य 13 निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान् तथा 64,1900 मई मासस्य 27 यावत् स्वीय

0: सेवां प्रदत्तवान्। निर्वाचित प्रधानमंत्री रूपेण पंडित नेहरू वर्यस्य कार्यकालः 98,300,000 दिवसान् यावत् आसीत्। 14,200,000 वर्षस्य मई मासस्य 26 दिनांकादारभ्य अद्य 26,200,000 वर्षस्य जून मासस्य 10 दिनांकं यावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः कार्यकालः निरन्तरं 99,300,000 दिनानि यावत् जातः, येन श्रीमोदी भारतस्य इतिहासे सर्वाधिकावधि पर्यन्तं निर्वाचित प्रधानमन्त्री अभवत्। एतस्मिन् अवसरे वैश्विक नेतारः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। श्रीलंकायाः राष्ट्रपतिः अनुरा कुमार दिसानायका एकस्मिन् पत्रे लिखितवान् यत् एषा उपलब्धिः न केवलं मोदी वर्यस्य कार्यकालस्य वर्षाणां प्रमाणमस्ति, अपि तु विश्वस्य बृहत्तमस्य लोकतन्त्रस्य जनानां तस्य नेतृत्वे पुनः पुनः स्थापितस्य विश्वासस्य प्रमाणमस्ति। एतदतिरिच्य पापुआ न्यूगिनी देशस्य प्रधानमन्त्री जेम्स मारापे, त्रिनिदाद टोबैगो देशस्य प्रधानमन्त्री कमला प्रसाद विसेसर च प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वर्याय शुभकामनाः अयच्छताम्। राष्ट्रिय जनतांत्रिक संयुत्याः उपवेशनमेकम् अद्य नवदिल्ल्याम् आयोजयिष्यते, यत्र अस्याः संयुत्याः प्रशासनस्य 12 वर्षपूर्त्यवसरे तथा प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः दीर्घसमयपर्यन्तं निर्वाचित प्रधानमन्त्री भवितुम् उपलक्ष्ये उत्सवः भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं भाजपा दलस्य शीर्षनेतृत्वं च समेत्य संयुत्याः सर्वे घटकाः उपवेशने भागं ग्रहीष्यन्ति इति आशास्यते। एतस्मिन् उपवेशने अनया संयुत्या शासितानां सर्वेषां 22 राज्याणां केन्द्रशासित प्रदेशानाञ्च मुख्यमन्त्रिणम् उपमुख्यमन्त्रिणञ्च समेत्य सर्वेषां घटकानां नेतारः अपि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ह्यः कुवैत देशस्य प्रमुखेण शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबाह इत्यनेन सार्धं दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। उभौ नेतारौ पश्चिमैशियायां परिवर्तित सुरक्षा परिस्थितिम् आलक्ष्य परस्परं विचार विनिमयं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा क्षेत्रे विवर्धित आततिपूर्ण विषये गंभीरा चिन्ता प्रकटिता तथा कुवैतस्य सार्वभौमिक प्रादेशिक अखण्डतां विरुध्य विहिताक्रमणान् प्रति भारतस्य प्रतिज्ञा पुनः प्रतिपादिता। असौ शान्तेः स्थैर्यस्य च पुनः स्थापनार्थं चिन्तां न्यूनीकर्तुं संवादं पारस्परिक सहभागिताञ्च दृढयितुं पुनरपि आह्वानम् अकरोत्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य बुल्गेरिया फिनलैंड देशयो द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् डॉ जयशंकरः बुल्गेरिया देशस्य स्वीय यात्रावधौ तत्रत्य नेतृत्वेन सह मेलनं करिष्यति तथा स्व समकक्षेण सह चर्चां विधास्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश ने आज दिया मुख्य खबरां। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तो बुल्गारिया अते फिनलैंड दे 2 दिना सरकारी दौरे ते होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नवी दिल्ली विच लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय दा उद्घाटन कीता है। केंद्रीय सेहत अते परिवार भलाई मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नवी दिल्ली विच प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSME दे 10 साल की याद विच PMSME दे 10 साल देखभाल दा एक दहाका विषय दे तहत देशव्यापी जश्ना की शुरुआत की। व्यापार मंत्रालय दा कहना है कि

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ये आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। साड़ी स्टूडियो की घड़ी मुताबिक इस वेले सवेर के 7:03 हो रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, अदाब, हसदा वसदा रहे तुहाडा परिवार। ते लो जी, नवी सवेर दे इस सोहणे वेले हुण वेला हो चुक है तुहाडी मनपसंदीदा प्रोग्राम सोहणी सवेर दा। ते सोहणे सफर च मैं तुहाडी दोस्त शुभता रहांगी जी तुहाडे नाल। दोस्तो, सवेर दा वेला शायद दिन दा सब तो सच्चा वेला हुंदा है। ना दिन की भज दौड़ शुरू हुई होंगी है हले इस वेले, तो ना ही शाम की थकावट होंगी है। बस एक नवा पन्ना हुंदा है ते उसते लिखन लई पूरा दिन। रब अज का दिन साडे हाथ च रख दिंदा है। हुण इह साडे ते है दोस्तों कि इसनू असी मुस्कुराहटां नाल भरना है या फिर फिकरां दे नाल। ते असी कोशिश करांगे जी कि हुण इह जिहड़ा एक घंटा है इस प्रोग्राम सोहणी सवेर दे राहीं तुहाडे दिन की शुरुआत नू असी थोड़ा होर सोहणा बना सकीए। तो चलो जी, फिर शुरू करदे आ अज दा इह सफर प्रोग्राम सोहणी सवेर च इस सोहणे जिहे गीत दे नाल।

बिल्कुल जी, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना। जड़ा अज दा दिन है ना, ओ बेशक संवाद ते गल कर रहा है, लेकिन जदों संवाद होवेगा, एक दूजे नाल मिलांगे, एक दूजे नूं समझांगे, एक दूजे की मदद करांगे, तां ही मिलके अग्गे वधांगे। आशा रफ़ी ते चौरस की आवाज़ से तुसी इंजॉय कर रहे से जे गीत ते प्रोग्राम चल रहा है सोहनी सवेर। ते दोस्तों, हुण इस प्रोग्राम च असी गल करांगे IMD वालों जिहड़ी जानकारी दित्ती गई है, यानी कि मौसम संबंधी। मौसम जिहड़ा है दोस्तों, गर्मी ने इस वेले काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा असी कह सकते हैं लोगों का हाल बेहाल किया होया है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, तापमान की जेकर असी गल करिए 44

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो। और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच

0: श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में अंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा

0: द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे PMEGP लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए

0: तैयार।
1: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था। हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
2: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
1: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोकसत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ल्ड लीडर्स हेल प्राइम मिनिस्टर मोदी'स ट्रांसफॉर्मेटिव गवर्नेंस एंड एडवोकेसी फॉर ग्लोबल साउथ। NDA to meet in New Delhi today to celebrate PM Modi's achievements and completion of 12 years of government. Centre unveils 1.25 lakh crore rupees rural development push. New framework under Viksit Bharat Jiramji to roll out from 1st July. US military launches strikes against Iran in response to downing of Army Apache helicopter off Oman coast. And in cricket, Ruthuraj Gaikwad's century helps India A beat Sri Lanka A by 8 runs in tri-series opener in Dambulla. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th of May in 1952 and served until 27th of May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now, Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest-serving elected Prime Minister in India's history. More details on this from our

साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी ले 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज कराओ।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजय, कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम महक पंजाबी। पंजाबी फिल्म म्यूजिक दे इस प्रोग्राम च सब तो पहला गीत असी तुहानू सुनान जा रहे हैं फिल्म एक वादा चो अमरिंदर गिल दी आवाज़। तुसी भी इंजॉय करो ये गीत।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਤਰਮਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੈਲ ਡਨ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਨਵਾਂ ਕੈਮਰਾ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਲੱਗੇ ਹੱਥ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਉਸੇ ਲੋਨ ਨਾਲ। ਨਾ, ਲੋਨ ਲਏ ਗਏ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੋ। ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਧਾਓ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਲੋਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਲੈ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ?
2: RBI ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ
1: ਵਿੱਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਾਰੀ।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम महक पंजाब दी च आखिरी गीत तुहानू सुनान जा रहे हैं, फिल्म सूफना चो एमी विर्क दी आवाज़। तुसी भी सुनो ए गीत
6: दा सांझा या रब।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम 100.8 मेगाहर्ट्स, एफएम 100.9 मेगाहर्ट्स अते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साड़ी प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। हुण पेश करन जा रहे हैं आकाशवाणी जलंधर दे प्रोग्राम विभाग अते खेतरी समाचार इकाई दी सांझी पेशकश, विचार चर्चा मिशन लाइफ। इस भाग लैण वाले ने श्रीमती सविता सिंह, इंजीनियर लुपिंदर कुमार ते संचालक राजेश चंद्र बाली। आओ सुनदे हां एक खास पेशकश।

0: जय हिंद दोस्तों, मिशन लाइफ भारत सरकार दी अजिही मुहिम जिहड़ी सानू अपने आले दुआले ते कुदरत नाल जुड़ के जीवन जीउण बारे दसदी है। भारत सरकार दे बीते 12 साल दे कार्यकाल दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों यह भी एक इनिशिएटिव साडे सारयां वास्ते लिया गया सीगा और जिस विच असी विश्व दी भी परवाह कीती सी ताकि उन्हों भी इस मिशन दे नाल जोड़िया जा सके। इस बारे विशेष विचार चर्चा करांगे। मैं हां राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार विभाग पंजाब दा मुखी, अते मेरे नाल ने एक्सपर्ट्स श्रीमती सविता सिंह, ओ नबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डिवेलपमेंट दे सहायक जनरल मैनेजर जलंधर जिले दे हैगे ने और उन्हां दे नाल ने पंजाब दा पानी अते मिट्टी दी सांभ संभाल बारे विभाग है उदे सब डिविजनल सॉयल कंजर्वेशन ऑफिसर जलंधर दे इंजीनियर लुपिंदर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडे दोनों दा।
1: धन्यवाद जी।
2: धन्यवाद जी।
0: पहला मैं श्रोता नूं ए भी दसना चाहवांगा जो लाइफ शब्द एदे विच हैगा है एदी भी एक फुल फॉर्म है। लाइफ दा वैसे दा मतलब जिंदगी हुंदा ही है पर एदे विच जो दा मतलब है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, LIFE मतलब लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, जिदा पंजाबी च सीधा मतलब है वातावरण लई जीवन शैली। सो ए मिशन लाइफ बारे पूरी चर्चा असी करांगे। सब तो पहला असी चलांगे सविता जी कोल। सविता जी, मिशन लाइफ बहुत वड्डा प्रोजेक्ट भारत सरकार दा जिदे च ना सिर्फ भारत नूं जोड़िया गया है बल्कि पूरे विश्व दी चिंता कीती गई है इहदे विच कि किस तरह असी भारत जिहड़ा साडा हैगा असी इस मिशन नूं लीड करके सारी दुनिया लई अपने देश समेत एक चंगी जो जीवन शैली है, जो कुदरती जीवन शैली है, उन्नू अपना के असी किस तरह अग्गे वध सकदे हैं इकट्ठे, इस बारे तुसी दसो सानू।
2: धन्यवाद बाली जी। जब हम इसकी बात करते हैं कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो हमारे एनवायरमेंट के लिए होनी चाहिए, तो जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो इसमें सभी चीज शामिल हो जाती हैं, जैसे कि हमारा एनर्जी सेविंग क्या है, हमारी वाटर कंजम्पशन क्या है, या हमारा अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल क्या है, ई वेस्ट हमें कैसे मैनेज करना है, या हमें अपने घर का सूखा और गीला कचरा कैसे मैनेज करना है। ये एक बहुत ही बड़ी मिशन है जिसमें हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है और मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इस मुहिम के साथ में, मिशन लाइफ के साथ में, हम सभी को ये मौका दिया कि हम सभी प्राउडली अपने एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ कर सकें। जैसे कि बहुत बड़े बदलाव के साथ नहीं, लेकिन छोटे छोटे बदलाव के साथ, जैसे कि आप कमरे में बैठे हैं, आप कमरे से बाहर आ रहे हैं तो आप अपने कमरे के इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बंद करके निकलें। बहुत छोटी सी गल है बट अगर हम ध्यान दें तो हर रोज हम अपनी बिजली बचा सकते हैं और साथ ही साथ अपना पैसा भी बचाएंगे, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पैसा हमारी वेस्टेज पे जाएगा वो हमारा बचेगा। इसके साथ साथ ही अगर हम सोचें कि मतलब इसका मेन उद्देश्य क्या है मिशन लाइफ का, तो बिना सोचे समझे हमें उपयोग नहीं करना है, सोच समझ कर उपयोग करना है। हमें ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस करना है, ज्यादा से ज्यादा रीयूज करना है और ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल करना है।
0: बिल्कुल ठीक क्या सविता जी तुसी के जो इस मिशन का मकसद है गया कि असी जो इस्तेमाल चीजा करते हैं उहदे च किस तरह उन्हां चीजां नूं असी दोबारा तो इस्तेमाल करिए ताकि साडे वातावरण ते उसदा जिहड़ियां यूज्ड चीजा ने, विशेष तौर ते जिहड़ियां प्लास्टिक दियां ने, सिंगल यूज प्लास्टिक दियां, उहदा दोबारा इस्तेमाल असी करिए ताकि नवीं चीजा ना खरीदनियां पैण, ताकि जिहड़ियां पहलां तो इस्तेमाल हो रही उहनां तां ही असी दोबारा तो इस्तेमाल कर सकीए। पानी बचाओ। और सब तो इंपोर्टेंट गल जो असी आम तौर ते अपने दफ्तरां घरां च भुल जांदे आ कि जदों भी असी अपने रूम नूं छड्डीए ते उत्थे जिहड़ी भी लाइट्स

0: हम बात करें तो उसमें वन गो में ही सर पूरा सर्फेक्टेंट जितना भी है हमारा नालियों में चला जाता है, तो वो पानी को पोल्यूट करता है। ऐसे में हम गर्मियों के सीजन में स्पेशली सर कर सकते हैं कि जो हल्के कपड़े हैं या फिर जो जल्दी सूखने वाले कपड़े हैं उन्हें हाथ से धुलें, और उसमें कम पानी का इस्तेमाल होगा, कम सर्फ का इस्तेमाल होगा, और हमारी हेल्थ भी बनेगी क्योंकि हम एक्टिव रहेंगे और हम अपने एनवायरमेंट को भी बचा पाएंगे।
1: बहुत अच्छी गल तुसी दसी है, पर दिक्कत अजकल दे जमाने विच की है कि लाइफ स्टाइल इन्ना ज्यादा फास्ट हो गया है, जिंदगी इन्नी तेजी नाल चलन लग पई है सारिया लई कि हर कोई चाहता है कि मैनू सब कुछ चीजा जिहड़ियां मेरे काम करन वालियां मिंटा सकिंटा विच हो जान। तुसी बहुत चंगी गल दसी है कि सर्फ दा जिन्ना इस्तेमाल असी करदे हैगे आ और जिन्ना वह पानी नू पोल्यूट करदा है, यह वाकई चिंता दी गल हैगी है। फिर भी जो जिहड़े घरां दे विच सारे ही वर्किंग हैगे ने और वह जदों घरों बाहर जांदे ने वह मशीन नू ऑटोमेटिक लगा के चले जाते हैं, उन्होंने वास्ते यह दिक्कत जरूर ने कि किस तरह इस नूं कटान। पर इहदा मतलब यह नहीं होंदा दोस्तों कि असी कोई चीज कर नहीं सकते। असी अगर चीज नूं अपनावांगे, भावें हौली हौली अपनाइए, कोशिश करिए कि इन्हां चीजा नूं असी इस्तेमाल घट करिए जिहड़ियां पानी नूं पोल्यूट करदियां ने, पानी नूं खराब करदियां ने, साडी धरती दे विच पोल्यूशन करदियां ने। हौली हौली हर चीज संभव हो जाती होंगी है। इहदे विच मैं तुहानूं एक चीज होर भी दसना चाहवांगा दोस्तों कि जिहड़ा इह मिशन लाइफ हैगा है, यह भारत की अगवाई वाली विश्वव्यापी जन अंदोलन हैगा जिन्हों साडे प्रधानमंत्री ने 1 नवंबर 2021 नूं ग्लासगो विच एक COP26 यानी COP26 सम्मेलन होया सीगा, उहदे विच उन्होंने इस बारे सारे विश्व नूं जानकारी दित्ती सी और इसका उद्देश यही सीगा कि जिहड़े आम लोग हैगे ने, भाईचारे हैगे ने, वह एक अजिही जीवन शैली का अभ्यास करन और जिस नाल कि वह कुदरत दे नाल समकाली होवे अते इस नूं नुकसान ना पहुंचाया जाए, मतलब कुदरत नूं नुकसान पहुंचाए बिना असीं अपनी जीवन शैली नूं अगे वधाईए। जिस तरह असीं पहलां वी साडा सारा विश्व जिहड़ा सीगा, साडा हिंदुस्तान जिहड़ा हैगा, असीं पहलां वी करदे रहे हां। इहदे जरूर ये चीज मन विच आंदी कि उस वेले जनसंख्या बहुत घट सीगी, हुण जनसंख्या बहुत वध गई है, पर उस वेले दी जनसंख्या जनसंख्या दे मुताबिक उस वेले दे लोग सानूं लगदा शायद ज़्यादा समझदार सीगे, चाहे उन्हां कोल टैक्नोलॉजी नहीं सी, पर उन्होंने बहुत ख्याल रख्या अपनियां जिहड़ियां साडियां कुदरती चीज़ां हैगियां ने। गल उत्थे आ जांदी है फिर जिस तरह वायु है, पानी है, धरती है, बहुत ख्याल रख्या। सानूं हुण सब नूं लोड़ हैगी है, असीं उस वापिस उस काल दे विच तां नहीं जा सकदे, पर जो इस वेले जिहड़ा साडा अपना समां है असीं उहनूं किस तरह चंगा कर सकदे हैगे आ अपने वातावरण नूं साफ करके। इहदे विच असीं सिंगल यूज प्लास्टिक दी वी गल कीती है पहलां वी, जिहड़ा साडा वेस्टेज हैगी है हुण घरां विच, इह बहुत छोटी छोटी चीजां ने दोस्तों, असीं इह चीजां ना असीं करदे आं, कई वारी बेध्यान नहीं करदे आं, कई वारी ध्यान नाल करदे आं, पर सिर्फ सानूं जरूरत है कि इहनां चीजां नूं अपने ध्यान विच लियान दी कि असीं किस तरह अपने जिहड़ा साडी एनवायरमेंट है, वातावरण है, उहनूं किस तरह उहदी सांभ संभाल करिए। असीं रिड्यूस वेस्ट दी गल कीती सीगी। लुपिंदर जी, मैं तुहाडे तों इह दुआरा जानना चाहवांगा, जो घर दे विच असीं चीजां इस्तेमाल करदे हैगे आं, जिस तरह मान लो हुण वेजिटेबल्स असीं कटदे हैगे आं या लिफाफियां दी गल तुसीं कीती ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਔਰ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਖਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ।
2: ਬਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਿਡਿਊਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਈ ਵਨ ਗੈੱਟ ਵਨ ਫਰੀ, ਪੈਨਿਕ ਬਾਇੰਗ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 800 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਨਿਕ ਬਾਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1700 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟਸ 'ਤੇ ਫੈਬਰਿਕਸ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਏ ਪੈਨਿਕ ਬਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟਸ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਬਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਡਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਗਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਰ ਲੀਚ ਹੋ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ

0: सर बोलते थे कि नहीं नहीं मम्मा, सब बच्चे नई कॉपी लेके आ रहे हैं और आप हमें पुरानी कॉपी में ही काम करने के लिए बोल रहे हो। तो मैं उन्होंने समझाई कि देखो तुसी जे अपनी कॉपी वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि तुसी एक पेड़ और कटवा दो। ते मैं ये लगभग 2 साल तक स्कूल से भी बहुत मैंने झगड़ा किया इस बारे में, झगड़ा भी नहीं कह सकते बट बहुत रिक्वेस्ट की, अपनी बात रखी मैंने और मैंने कहा कि मैं जब तक टिल लास्ट पेज कॉपी नहीं भरेगी आई विल नॉट गिव यू द नेक्स्ट कॉपी। तो ऐसे में टीचर्स ने लगभग 2 साल बाद मेरी बात को अंडरस्टैंड किया और मेरे बच्चे पूरे साल भर उस कॉपी में लिखते हैं जिसमें एक पेज भी खाली नहीं रहता है। तो ऐसे में मैंने बहुत सारी कॉपियां बचाई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और वो कॉपीज मैंने क्या किया जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे थे उनको बचा के दी, क्योंकि ये भी कंपल्शन है हमारे यहाँ मार्केट में अब कि जो सेट है वो पूरा खरीदना पड़ेगा, अगर आप कॉपियां निकलवाओगे तो आपको किताब भी नहीं मिलेंगी। देन उसी के साथ साथ सर मैं एक और चीज कहना चाहूंगी एज ए मदर भी एज ए पेरेंट्स भी सर, एंड एज ए अगर बात करें इन्वायरमेंट की सांभ संभाल के लिए सर, हम हर साल अपनी बुक्स बदल रहे हैं। वो भी सर एक रीजन है कि बहुत सारे पेड़ों की कटाई जबरदस्ती हम कर दे रहे हैं बिकॉज कंटेंट सेम है। जैसे कि मान लीजिएगा कि अगर फूड चेन पढ़ानी है बच्चे को तो फूड चेन तब भी होगी बट वो 3rd चैप्टर की बजाय 7th चैप्टर में हो जाएगी या 7th की जगह 5th चैप्टर में हो जाएगी, बट फूड चेन हमें पढ़ानी है तो पढ़ानी है सर। ऐसे में सर जो बुक्स की हम रीअरेंजिंग करते हैं बार बार और उसे नया किताब का नाम दे रहे हैं तो वो भी अपने आप में सर कहीं ना कहीं एनवायरमेंट पे चोट है। तो हम
1: अच्छी गल दसी है सविता जी ने, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी इन्होंने लिया कि जो इन्होंने बच्चों के स्कूल सिगे उन्होंने टीचर्स नु किया कि जब तक एक कॉपी मेरे बच्चों की पूरी नहीं पढ़ जाएगी भी पूरी नहीं पढ़ जाएगी मैं उसनु चेंज नहीं करांगी। मैं लगता है कि इन्होंने गल तो एक चीज जो नवी अगे आई है वो है कि जेडे साडे एजुकेशनिस्ट हैगे ने उन्होंने भी इस बारे इस मिशन दे विच अपना हिस्सा पाउन दी लोड हैगी है, ताकि जो इन्होंने गल दसी है कि एक सब्जेक्ट दीआं 5 कॉपियां सानू मिलदियां ने, अगर 6 सब्जेक्ट हो गए तो 24 कॉपियां वो भी हो गई और हरेक जदों एक खत्म होंदी है चाहे भावें अद्धी खत्म हुई होवे टीचर कहिंदा कि नवीं लगा दित्ती जावे। अल्टीमेटली जो उहदा असर पै रहा है वह साडे पेड़ां दे उत्ते पै रहा है कि जिहड़ा कागज़ बनूगा वह तो पेड़ां नूं ही कट के बनेगा, और पेड़ां नूं कट्टण दा मतलब है कि असी अपने जिहड़ी साडा वातावरण है जिहड़ी साडी धरती मां हैगी है असी उहनूं बिल्कुल नष्ट कर रहे हैगे आ। उन्ने पेड़ जिन्ने कटदे ने उहदे मतलब इही है कि असी कित्थे ना कित्थे उहनां दा इस्तेमाल कर रहे हैगे आ। इहदे विच मैनूं लगदा कि साडे जिहड़े एजुकेशन वाले हैगे ने इस विच अपना योगदान पाउण दी लोड़ है, और इह बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव हैगा कि कॉपियां दे पूरे इस्तेमाल दे बाद ही भावें अगर अद्धी कॉपी किसी एक सब्जेक्ट दी मुक गई है उन्हों उत्थे स्टेपल करके या बंद करके उस दे कॉपी दे अद्धे हिस्से नूं ही असीं दूसरे सब्जेक्ट दे नाल जोड़ दईए, असीं कित्थे दा बच्चे नूं सिखावांगे ना कि तुसीं भी ये चीज करोगे तां ही साडा ये सांभ संभाल होनी है। इहदे च मैं तुहानूं एक चीज होर दसना चाहना दोस्तों कि गल उत्थे आंदी जिहड़ा साडा मिशन लाइफ हैगा इह साडी जीवन शैली नाल ही जुड़िया होया। जद तक असीं जैव विभिन्नता की संभाल नहीं करांगे इहदा मतलब यह है कि जिहड़े घर भी अपने बनाने असीं आम तौर पर वेखदे हां कि कोई असीं खाली जगह नहीं छड्डी दी, कोई उत्थे ग्रीन स्पेस नहीं रखी दी, कोई पेड़ नहीं उगाई दा, कोई पौधे नहीं उगाई दा, यह बहुत जरूरी है साडे जीवन शैली नूं अगे वधाउण लई साडे वातावरण नूं संभालण लई। मिशन लाइफ दे विच असीं सारे जने तुसीं वी असीं वी रल के जद तक अपना हिस्सा नहीं पावांगे साडा यह मिशन जो लाइफ है यह सफल नहीं होवेगा, और इहदे सफल ना होण दा मतलब यह है कि सानूं चंगी जीवन शैली जीवन नूं साडे आन वालियां जिहड़ियां पीढ़ियां ने उहनां वास्ते कुछ भी असीं छड्ड के नहीं जावांगे जिहदे वास्ते खुश हो सकन एक चंगे वातावरण च रहण लई।
0: वाली साहब रीयूज रिड्यूस एंड रीसाइकल के बारे में बहुत सारी बात की, उसी पे मैंने एक कविता अपनी लिखी थी पर्यावरण मिशन लाइफ को संबोधित करते हुए ये मैंने अपनी कविता लिखी थी। एक तरह से एक गुजारिश है सभी मेरे भारतवासियों के साथ में, अगर पॉसिबल हो तो इसको प्लीज अप्लाई करो। अब भी वक्त है थोड़ा बाकी, अब भी वक्त है थोड़ा बाकी, प्रण तुम ये ले लो साथी, किया जो अतीत में उसको छोड़ो, बची कुची जो धरती बाकी मेरे यारो उसे संभालो, खत्म करो ये चक्र यहीं पर, नहीं किताब में अध्याय ये जोड़ो, अगली पीढ़ी तुम्हें पढ़कर फिर से ये ना कह पाएगी, गर्व किया होता पुरखों ने प्रकृति का सम्मान तो खोजना न पड़ता हमें ये जंगल और मैदान।
1: बहुत अच्छी तुसी ये पंक्तियां पेश कीते ने सविता जी। इस प्रोग्राम नु खत्म करन वेले मैं इक तुहानू प्रधानमंत्री जी दा इक कोट जिहड़ा सीगा ओह मैं तुहानू दसना चाहवांगा। उन्होंने एक वारी किया सीगा कि सानू ये याद रखन दी लोड़ है एक मंत्र जिहड़ा कि संस्कृत हैगा प्रकृति रक्षति रक्षिता, जिसका मतलब है दोस वो प्रोटेक्ट नेचर, नेचर प्रोटेक्ट दैम। पंजाबी विच इहदा मतलब है कि जो कुदरत नूं सांभ संभाल करदे ने कुदरत उहनां दी संभाल

वाह, कितनी खूबसूरती नाल इस गज़ल ने सानू ए एहसास करवाया है कि जदों इंसान दा दिल सच्चाई अते मुहब्बत नाल भर जावे तां हर गल विच रब दा नूर नज़र आउण लग पैंदा है। ते इसे रूहानी एहसास तो बाद आओ सुनदे हां एक होर खूबसूरत गज़ल।

दोस्तों, आज दी इस गज़ल परी महफिल नू इत्थे ही विश्राम दिंदे आ। उम्मीद है कि अज दे अल्फाज ते सुर तुहाडी दिल नू छू के गए होणगे। हुण मैनू अपनी दोस्त शुभिता नू दो इजाज़त, फिर मिलांगे।

हुने तुसी सुन रहे सी गजलां मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन पेश ने आज दियां मुख खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए ने। श्री मोदी ने 26 मई 2014 नूं अहुदे दी सहुं चुकी सी। मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होण अते प्रधानमंत्री दे सब तो लंबे कार्यकाल की प्राप्ति दे संबंध च अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ NDA दी नवी दिल्ली च बैठक। विदेश मंत्री डॉ SJ Shankar तो बुल्गेरिया अते फिनलैंड दे 2 दिना सरकारी दौरे ते होणगे। केंद्र ने देश विच देहाती विकास लई 1.25 लाख करोड़ रुपए दे प्रोग्राम दा ऐलान कीता है। पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 31 स्टार्टअप्स अते उना दे संस्थापकां नूं 1 करोड़ रुपए तो वध दी सीड ग्रांट वंडी। पंजाब विच झोने दी लुआई लई 3जा पड़ाव कल तो आरंभ हो गया है। पंजाब दे ट्रांसपोर्ट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जलंधर ते लुधियाणा तो दिल्ली दे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक चलण वालियां 5 नवियां सुपर इंटीग्रल वॉल्वो कोच बसां नूं हरी झंडी दिखा के रवाना किया। अमृतसर देहाती पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियां नाल सांझी कार्रवाई दौरान सरहद पार बैठे संचालकां नाल जुड़े 2 व्यक्तियां नूं गिरफ्तार किया ते 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए। पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी पुरब मौके पाकिस्तान स्थित इतिहासक गुरुधामा के दर्शन करन लई अज 541 श्रद्धालुओं का जत्था श्रोमणी कमेटी के मुख दफ्तर तो पाकिस्तान लई रवाना होगा। क्रिकेट विच ऋतुराज गायकवाड़ दे सैकड़े की बदौलत भारत ए ने दांबोला च तिकौणी 1 दिना अंतरराष्ट्रीय मैच की लड़ी च पहले मैच में श्रीलंका ए नू 8 दौड़ा नाल हराया है। ऐसन अज दियां मुख खबरां।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, DRM 864 किलोहर्ट्स, FM 100.8 मेगाहर्ट्स, FM 100.9 मेगाहर्ट्स आदि DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। इस वेले साडे स्टूडियो दी घड़ी मुताबिक सवेर दे 10:03 हो रहे हैं ते हुण वेला हो चुके है जी तुहाडी मन पसंदीदा प्रोग्राम हैलो फरमाइश दा। लाइव फोन इन इस प्रोग्राम च तुसी शिरकत कर सकते हो ते अपने मन पसंदीदा गीत सुन सकते हो। शिरकत करन लई तुसी नंबर डायल करो जी, नंबर है 0181 3242 173। ए नंबर डायल करो, प्रोग्राम च करो शिरकत ते सुनो अपने मन पसंदीदा गीत। प्रोग्राम दी आगाज करदे आ फिल्म मेरी ब्रदर की दुल्हनिया चो राहत फतेह अली खान की आवाज च गाए इस गीत के नाल।
1: अक्कान की फरमाइश बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के। पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया लड़ीवार नाटक होया।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल ID jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे दोस्तों, हलो फरमाइश ते आओ जानते हैं इस प्रोग्राम च सब तो पहली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हलो,
2: प्यार ते सतिकार भरी सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने?
2: सोम दत्त बोलदा जी, मैं इस गेट नाभे तो जी।
1: बहुत बहुत स्वागत है जी साडा इस तुहाडा इस प्रोग्राम च।
2: ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੈਣ ਜੀ।
1: ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ?
2: ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਣ ਸਾਰੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਨੇ ਅੱਜ, ਪਰ ਜੋ ਗੀਤ ਸੁਣਾਂਗਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਮੂਵੀ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਮਹਿਫਿਲ ਮੇਰੇ ਕਾਮ ਕੀ ਨਹੀਂ।
1: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼। ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਗੀਤ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ,
1: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਫਿਲਮ 'ਚੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੈ ਗੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 0181-2342-173। ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ।

0: नमस्कार जी, की हाल चाल ने?
1: बहुत बढ़िया जी, ठीक ठाक।
0: हाँ जी, फिर केड़ा गीत सुनोगे जी? आज प्रोग्राम जो तुहाडा कॉल लग गया है, किन्नी देर बाद कॉल लग गया?
1: साल में वैसे तो हो गए होने 10-12 दिन
0: चलो 10-12 दिन बाद कॉल लग गया, फिर आज केड़ा गीत सुनना है तुसी?
1: जी। तो मैं सुना दो, फिल्म है शोर,
0: ठीक है जी,
1: ते गीत दे बोल है ना जीवन चलने का नाम।
0: ठीक है जी, जरूर कर दिया तुहाडी फरमाइश पूरी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई।
1: थैंक यू।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

0: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण हुंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होने वालियां पंजाबी खबरां दा प्रसारण रोज शाम 7 किया जा रहा है। सरकार दे माण मत्ते 12 सालां दी कामयाबी दी कहानी आकाशवाणी दे समाचार सेवा विभाग दी जुबानी।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। प्रोग्राम चल रहे जी हेलो फरमाइश ते आओ जानदे आ फिर अगली फरमाइश केड़े कॉलर दोस्त लेके आए ने। हेलो
2: हेलो नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे ने?
2: संजीव कुमार बोल रहा हूं, मैं स्टैंड से बोल रहा हूं, तस्वीर में पेरिया
1: था। बहुत-बहुत स्वागत है जी, की हाल चाल है? हाँ जी, फिर आज केड़ा गीत सुनोगे तुसी प्रोग्राम च शिरकत कीती है ते?
2: हेलो हैगी लाल दुपट्टा मलमल दा।
1: हाँ जी,
2: गीत है क्या करते से साजना तुम समझते हो?
1: ठीक है जी, जरूर कर दें ऐसी तुम्हारी फरमाइश पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई। धन्यवाद जी। लाल दुपट्टा मलमल का सन 1988 जो फिल्म आई सी ते इस दे विचों जिहड़ी इहनां दी फरमाइश है गीत दे जिहड़ा गाया है वह आवाज़ दित्ती है उदित नारायण ते अनुराधा पोदवाल ने। लो जी तुसी भी इंजॉय करो इहनां दी फरमाइश दा गीत ते हाँ जी अपनी फरमाइश भी तुसी दस सकते हो। उहदे लई प्रोग्राम च शिरकत करनी पएगी। प्रोग्राम च शिरकत किवें करनी है? नंबर डायल करके, नंबर है 0181 243173। प्रोग्राम हैलो फरमाइश, इंजॉय करो ये गीत।

0: लाल दुपट्टा मलमल का, इस फिल्म चो उदित नारायण ते अनुराधा पौडवाल दी आवाज़ से तुसी सुन रहे सी जे बहुत सोहना जो गीत ते प्रोग्राम हलू फरमाइश। आओ जानते हाँ हुन अगली फरमाइश कौन लेके आए ने। हैलो
1: सत श्रीकाल भैन जी।
0: सत श्रीकाल जी, कौन बोल रहे ने?
1: मैं बलवीर सिंह जी, पिंड करनी सर, जिला फाजिलगा जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। किन्नी देर बाद कॉल लग गया ते तुहाडा की हाल चाल है?
1: साल हो गया पूरा जी।
0: लो जी साल हो गया ते अज ते फिर बहुत खुश हो वक्त साल बाद तुहाडी कॉल लगी है।
1: फोन रोज बुलाना पे मिलदा नहीं, साल हो गया पूरा।
0: चलो अज फिर तुहाडे आ वधिया दिन बीतेगा क्योंकि तुहाडे अज फिर कॉल लग गई है।
1: हाँ जी
0: खुश हो तुसी?
1: हाँ जी,
0: खुश होवोगे तुसी?
1: खुश है गया ऐसी गाय।
0: हाँ जी, फिर आज केड़ा गीत सुनोगे? अपनी फरमाइश दसो।
1: रोटी फिल्म का सुना दीजिए।
0: रोटी फिल्म चो केड़ा गीत है जी?
1: बुरे रंग इतना गमान ना कर।
0: ठीक है जी, जरूर कर दें तो हड्डी फरमाइश पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई,
1: शुक्रिया जी।
0: धन्यवाद। रोटी फिल्म सन 1974 च फिल्म आई और इस फिल्म चो इन्हों की फरमाइश का जोड़ा गीत है उसनों गाया है लता मंगेशकर ते किशोर कुमार ने। लो जी सुनो तुसी भी सोना जे गीत।

0: जंजीर फिल्म का गीत तुसी इंजॉय कर रहे थे। प्रोग्राम हालो फरमाइश कड़ी दी सुइयां जिहड़ियां ने प्रोग्राम नू खत्म करन वल इशारा कर रही ने, लेकिन कुछ समय बाकी है तो आओ जानते हैं आखिरी कॉलर केड़े ने। हैलो,
1: हेलो, नमस्कार मैडम, गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग जी। तुहाड़ी कॉल लग गई है, जिहड़े लास्ट असी दो बार ट्राई किया उस टाइम कनेक्ट नहीं हो रही
1: बिल्कुल
0: सी, ते
1: बिल्कुल,
0: शायद
1: तुहाडे
0: तुसी
1: बहुत
0: तुहाड़
1: वधिया प्रोग्राम पेश कीता जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी। हाँ जी, फिर समा घट है तो तुसी फटाफट दस दो कि केड़ी फरमाइश है ते केड़ा गीत
1: हाँ
0: सुनना
1: जी
0: है।
1: मैडम जी, सुनो ना कि गीत गाता चल उहदा गाना जी, बचपन हर गम से बेगाना होता है।
0: ठीक है जी, जरूर कर दें असी तुहाड़ी फरमाइश पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने लई,
1: थैंक यू जी, ओके जी, बाय बाय।
0: बाय। ओके, सो गीत गाता चल इस फिल्म चो किशोर कुमार ते साथियां दा गाया गीत, इन्हां दी फरमाइश जाते जाते इस प्रोग्राम च पूरी करदे हां, ते आस करदे हां तुहाडा सारिआं दा दिन जिहड़ा है वो सोहणा बीते, चढ़दी कला च रहो सारे। ते इस दे नाल ही मैनू अपनी दोस्त शुभता नू हुण प्रोग्राम चो इस आखिरी गीत दे नाल इजाजत रहो ते बने रहो आकाशवाणी रेडियो दे नाल।

0: हुने तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम हलो फरमाइश। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन तुसी साडे दिल्ली केंद्र तो सुनोगे हिंदी च समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। श्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्ण ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के प्रति उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के भी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टि कोण पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉ जयशंकर 14वीं कुलतारांता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक, क्षेत्रीय, स्थानीय।

0: प्रेक्षे। डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के विरोध में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मिनाब, बंदर अब्बास और केशम द्वीप पर धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी जो होर्मुज जल डमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन सेवा ही सुशासन का सच्चा मापदंड है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि केवल वही व्यक्ति जनता का विश्वास अर्जित कर सकता है जो विनम्रता, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करता रहता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन सुनदे हां प्रोग्राम तमक जलंधर पेंदी।

जी सतनाम सिंह रखरा तो, अमरजीत कौर रखरा तो, तेग फतेह सिंह रखरा तो, जसगुन रखरा, अमर नूरी, माफ़ करना, ए पिंड बागा पुराना तो लिख देने जी। ते अगले साथी ने रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर, जसपुर उत्तराखंड। तो अगला मैसेज है छोटी बलिया मुंबई करजत तो, अहमद भाई फूलवाले, दुखना सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद, आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया ते आशुद अहमद। पिंड झजेड़ी, तहसील खरड़, जिला SES नगर तो, लियाकत अली, निशा शाहीन, यास्मीन, अरमान मलिक, मॉडल टाउन करनाल तो लिख देने, सुधीर नूतन, संदीप बुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर, सोनिया कालका किरण, सेफ वॉट, लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लिख देने, मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान, इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख हते, अमन आफरीदी। अगले साथी ने जी गुरचरण सिंह, गुरलाल बीर सिंह, परवन सिंह, हृदया सिंह, फाजिलका, पिंड डबवाला कला तो, सुखदेव कलेर, नरेश कलेर, संतोष रानी, पूजा रानी, पुनीत निगाह, शुभदीप कलेर, बलाचौर तो। अगला मैसेज आया जी रिम्पी सिंह, पाल सिंह, सलीम खान, तनवीर कौर, पिंड पहेड़ी, जिला अम्बलो, जिला फतेहगढ़ साहिब तो। पिंड डाकखाना निमनाबाद नेड़े सफीदो मंडी, जिला जींद हरियाणा तो लिख देने, जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर ते करमजीत कौर। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत हाजिर है जी कवर गरेवाल दी आवाज़ विच।

ओ विहू चावला। पिंड खाने की टाब मलोड़ तो लिख देने शमशेर सिंह कौलदर जसविंदर कौर मनरीत कौर करण प्रताप सिंह तरनवीर अते मनताज। अगले साथी ने जी विनोद पुरी वीपी राजू अशोक पुरी सुशील पुरी बीके पुरी कैलाश पुरी नीलम पुरी रमा पाली सुनील पाठक अते विनोद पुरी मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना। तो अगला मैसेज है जी बंसीलाल संधू दा पिंड तेजा मोदी तो मेन बाज़ार हठूर तहसील जगराओं जिला लुधियाना तो इकबाल सिंह हठूर। ते अगले साथी ने गगनदीप थांदी तृप्ता कुमारी थांदी डॉक्टर प्रियंका थांदी डॉक्टर प्रशांत डॉक्टर प्रियस थांदी भामिका अते वाणी। ए मैसेज है जी पिंड ते डाक खाना टोरोवाल तहसील बलाचौर जिला नवांशहर तो। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे आ नछत्तर गिल दी आवाज़ विच।

0: प्रोग्राम चल रहा है जी, धमक जलंधर पैंदी ते वापस प्रोग्राम चल रहा है जी, धमक जलंधर पैंदी वापस आने हैं एक छोटे जे अंतराल तो बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर वन, ए परिवारिक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारिक लड़ीवार फैमिली नंबर वन।
3: देखदे हां जी प्रोग्राम धमक जलंधर पेंडी विच अगले मैसेज किस किस ने भेजे ने जी। अगला मैसेज आया है MLB रोड ग्वालियर तो सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू अते SK पप्पी खुराना दा। अगले साथी ने जी सहावर रोड गंज रुडवारा तो मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद कलीम अंसारी अते शामसुल कमर राही। अगले साथी ने एम असलम सैफी, जैबुनीशा बेगम, सद्दाफ सैफी, सोनी सैफी, जाहिर सैफी अते आबाद खान कासगंज तो, बिलराम गेट कासगंज तो लिखते ने। अगले साथी ने जी पिंड ककराली जिला पंचकुला तो वेद प्रकाश प्रजापति, लक्ष्य, एंजल, नेहा, अंजलि, गुरमीत कौर, शुभम, लवली अते अगले साथी ने दीवान रेडियो गाजीपुर यूपी तो सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, गमिया जमशेदपुर तो बिपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार अते आर्य कुमार। अगला मैसेज आया जी मुजफ्फरनगर बिहार तो आर्यन राज, रोहित राज अते पीयूष कुमार दा। ते अगला मैसेज है जसवंत सिंह, सरपंच गुरतेज सिंह, लालचंद, दविंदर सिंह, मलकी सिंह अते ड्राइवर महकमा दा जीदाबाद तो। अगले साथी ने मुंगी पैठन महाराष्ट्र तो बाबा साहेब कंगणकर, साखरबाई कंगणकर, परमेश्वर, रोहिणी, श्रावणी, ईश्वरी अते कंगणकर परिवार जी। ते अगले मैसेज दे साथी ने जी मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र तो अभिजीत गोहानकर राही, सिद्धांत गावनकर, प्रिंस एकांश, टुकटुक अते सरिता। मेरठ कैंट तो लिखते ने दिग्दर्शन अते कविता गौड़, फतेहाबाद हरियाणा पुरानी तहसील चौंक तो इंद्रपाल बिट्टू, चंचलपुरी, आंचलपुरी, गगनपुरी, प्रिंसपुरी, जीवन सिंह बूक। अगले साथी ने जी तमदा ग्राम सुखरी कला तो अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगेल अते अंजलि जंगेल, आर्यनगर कोहका पिलाई तो उत्तम सिंह जंगेल, मॉरिस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत, आयुष अते नंदिनी। अकरम हुसैन प्रिंस, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीन अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा अते पूनम कुमारी शर्मा लिखते ने कलेर बिहार तो। ये साथी ने जी नाज मंजिल महसौली सीतामढ़ी तो, ते कलेर बिहार तो लिखते ने मोहम्मद आसिफ खान, निखत परवीन, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश तो मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार अते नरगिस खातून। पिंड नंगलखेड़ा नेड़े फगवाड़ा तो बालकृष्ण शर्मा, परवीन शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा, नरेंद्र चावला, पिंड मुकरामपुर तहसील बसी पठाना जिला श्री फतेहगढ़ साहिब तो हरीश प्रिंस, मुस्कान प्राची, मेहक धनमीत, मनी अते पीयूष नेहा ते ओम। आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान ते राधे भविक टिंगरा लिखते ने जी पंचकुला तो। ते अगले साथी ने पिंड बसौली नेड़े लालरू मंडी तो सूबेदार साधु सिंह पट्टी, आरव पट्टी।

सकीला पट्टी, कुलवंत कला, तीनू पट्टी। अगला मैसेज आया जी, मक्खू तो बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर, फिरोजपुरी, मनीष बजाज दा। अगले साथी ने जिला बरेली, ग्राम करेली तो मोहम्मद आमिर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी, शमीम अते माहिनूर अंसारी, दर्शन सिंह, अवतार सिंह, जबर जंग सिंह चीमा, पिंड अलूणा से, अलूणा म्याना, तहसील पायल, जिला लुधियाना तो गिद्दड़बाहा तो मनजीत तनेजा अते परवीन तनेजा, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान तो लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित ते खुर्शीद, खुशी गोस्वामी, बलकार सिंह बद्दन, अर्शदीप सिंह बद्दन, विजय कुमार कंडौल, सोनू प्रधान, प्रीतम सिंह नेड़े घुमियार देवी माता मंदिर हाजीपुर तो ही विजय, सोनू, प्रीत, तनु, गणेश, गीत, दलजीत सिंह, अनु, रितु दीवान, भुवनेश्वरी राणा, पूजा दीवान, सोनू मोनू, अमन वर्मा, रमन वर्मा, देवांश वर्मा, डॉक्टर मदन लाल, कृति वर्मा, सिद्धार्थ वर्मा, ये लिख देने जी हनुमानगढ़ जिला फाजिलका तो। आओ फिर इन्हां सब दी रली मिली पसंद दा प्रोग्राम दा अगला गीत सुनदे हां गुरदास मान दी आवाज़ विच।

अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम। लड़ीवार नाटक होया।

0: ਪੈਂਦੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, FM 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ FM 103.6 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਲਵਲੀਨ ਨਿਗਮ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में ARF की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ।

0: मौसम विभाग ने आज दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू और कश्मीर लद्दाख उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुन सुनदे आं प्रोग्राम वसदे वेड़े।

0: बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी। तुसी शक्ति रूपा दे तहत सालू मारदा थे मक्का होरा दे जीवन बारे साडे श्रोतियां दे लई बहुत वधिया जानकारी इकट्ठी कीती ते उन्हां तक पहुँचाई।
1: वाकई। और अलका जी देखो, सानू भी इन शख्सियतों तो प्रेरणा लैनी चाहिए है और वातावरण के नाल एक सांझ पा के रखनी चाहिए है और अपने आस पास हरियावल बना के असी सारे रखिए ताकि साडा जीवन जिहड़ा है आने वाले बच्चों का जीवन है वह हमेशा हमेशा सुरक्षित रहे।
0: बिल्कुल जी, इस चीज़ का ता ही फायदा है कि जे असी इन्हां चीज़ां नूं अगे तो अगे पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रखिए।
1: जी ते अलका जी, हुण घड़ी दियां सूईयां कह रही हैं कि इजाज़त लैण दा समां हो गया है।
0: ते मैनू अलका नू
1: मैनू ज्योति नू दियो जी इजाज़त।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुण पेश है साढ़े अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उना दा प्रसारण समा। हुण तो कुछ देर बाद 1:15 ते फौजी वीरां दे मनोरंजन लई फिल्मी गीतां दा प्रोग्राम होवेगा फौजी वीरां लई। बाद दोपहर 2:30 आनंद मान नाल लोक गीतां दे प्रोग्राम रंगली धरती दा। अज इस विच तुसी रमनजीत कौर दे गाए लोक गीत सुन सकोगे। चार वज के 2 मिनट ते आनंद मानना सदाबहार गीतां दा। शाम 4:30 तुसी श्री दरबार साहिब अमृतसर तो शब्द कीर्तन दा सीधा प्रसारण सरवण करोगे ते 5:30 सरवण करना साडा रोजाना प्रोग्राम गुरबाणी विचार।

0: शाम 6:30 बजे दा समा रहेगा देहाती प्रोग्राम दा। सात बज के 10 मिनट ते साढ़े दिल्ली केंद्र तो सुन सकोगे एक खास प्रोग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर। सात बज के 45 मिनट ते सुनना समाचार समीक्षा। सात बज के 50 मिनट ते मेरी नई कहानी विच सुन सकोगे कमलेश गुप्ता तो कहानी सफलता की माप। आठ बजे दा समा रहेगा प्रोग्राम जिंदगी हसीन है दा। 8:45 ते सुनना समाचार संध्या। 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 बजे स्पॉटलाइट अते 9:30 बजे चर्चा का विषय साढ़े दिल्ली केंद्र तो अते 10:02 ते सुन सकोगे प्रोग्राम तुहाड़ी फरमाइश। ए सी साढ़े अज प्रसारित किए जाने वाले प्रोग्रामा दा वेरवा ते उन्हां दा प्रसारण समा। खबरां अपने निर्धारित समय ते सुन सकोगे।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
2: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल कीती गई है जिथे मिलेगा तुहाडे केस नू तुरंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
3: पर की उस दे लई मैनू दिल्ली जाना पाएगा?
2: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
3: अप्लाई किवें करिए?
2: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sci.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-2311-2428 ते संपर्क करो।
3: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
4: हेलो,
5: नमस्कार। भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण आपको याद दिलाता है कि आपके मोबाइल नंबर पर असामान्य उपयोग का पता चला है और सेवा आज निलंबित कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया 9 दबाएं।
6: सावधान, अजे ही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला 1 मिनट ले रुको ते सोचो, पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। इस वेले दोपहर दे 1:10 हो रहे ने। आओ हुन सुनदे हां प्रादेशिक खबरां।

फौजी वीरो जय हिंद, मैं निधि चुगला के हाजिर हाँ फिल्मी गीतां दा ए प्रोग्राम तुहाडे लई खास तौर ते। ते इस प्रोग्राम दी शुरुआत करदे हां फिल्म धूम दे एक गीत दे नाल। इस गीत नूं आवाज़ दित्ती है अभिजीत अते सौम्या राव ने।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ये 12 करोड़ तो वत नवे उद्यमियों ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कर्जे प्राप्त किए ने। सरकार नौजवानों नु रोजगार ते आत्मनिर्भरता नु अगे वधाउण अते उन्हां नु नौकरी लभण वाले नहीं सगो नौकरियां पैदा करन वाले बनाउण लई मजबूत बना रही है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना तहत 60 लाख तो वत नौजवानों नु लाभ पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तहत 1.6 करोड़ तो वत नौजवानों नु सिखलाई दी गई है। वधदी हुनरमंद प्रतिभा मेक इन इंडिया पहलकदमी नु शक्ति दे रही है। रोजगार मिलिया नहीं 12 लाख नियुक्ति पत्र वंडे गए ते रोजगार दे सुपने नु हकीकत विच बदलिया गया। 2 लाख तो वध स्टार्टअप्स ने 23 लाख तो वध नौकरियां दे मौके पैदा कीते अते स्टार्टअप इकोसिस्टम्स नु एक मजबूत नींव प्रदान कीती। 2 लाख तो वध स्टार्टअप्स ने 23 लाख तो वध नौकरियां दे मौके पैदा कीते अते विद्यार्थियों वल्लों विकसित कीते 16 लाख नवीनता प्रोजेक्टा ने स्टार्टअप्स इकोसिस्टम नु एक मजबूत नींव प्रदान कीती। सरकार दी हिमायत नाल देश दी युवा शक्ति भारत लई एक नवी सवेर लिया रही है। ब्यूरो रिपोर्ट नाल मैं सरबजीत कौर, आकाशवाणी खबरां जलंधर।
1: सरकार ने राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां लई 95,692 करोड़ दे अंतरिम बजट अलाटमेंट दी तजवीज़ रखी है, जिस नाल मनरेगा तो विकसित भारत रोजगार गारंटी ते आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी विच सुचारू तब्दीली नूं यकीनी बनाया जा सकेगा। यह एक्ट 1 जुलाई तो देश भर च लागू होगा। पेंड विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवी दिल्ली च राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां दे पेंडू विकास मंत्रियों नाल एक वर्चुअल मीटिंग तो बाद इसका ऐलान किया।
2: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश च CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों पाइप राही कुदरती गैस PNG की सप्लाई वधा रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनैक्शनों PNG कनैक्शन च बदलने दी कोशिशां कीतियां जा रही ने। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत जानकारी फैला के आलमी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे ने। श्री पुरी ने कहा कि सरकार अजिहां गतिविधियां खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो बुल्गारिया ते फिनलैंड दे 2 दिना सरकारी दौरे ते ने। विदेश मंत्रालय ने दस्सिया कि बुल्गारिया दी अपनी यात्रा दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया दे चोटी दे नेतावां ते विदेश मंत्री नाल मुलाकात करनगे अते विचार वटांदरा करनगे। अफगानिस्तान दे कोनार होस्ट अते पतिका प्रांतां विच पाकिस्तानी फौज दे हवाई हमलों विच 13 लोग मारे गए, जिन्हां विचों ज़्यादातर बच्चे ने। तालिबान दे बुलारे ज़ेहुल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करदिया कहा कि इसने कल रात नागरिकों के घरों निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने एक बार फिर अफगान हवाई खेत्र की उलंघना की थी, इस मानवतावादी अपराध से हमलावर कार्रवाई करार दिता है। दक्षणी फिलीपींस में बचाव टीमों ने कल नुकसानिया इमारतों की तलाशी ली ताजो यह यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी व्यक्ति इन्होंने अंदर फसया ना हो। एक दिन पहला 7.8 तीव्रता वाले भूचाल च 37 लोग मारे गए, लगभग 500 जख्मी हुए ने ते 32,000 तो वध लोग बेघर हो गए ने। दहाकियां च देश च आए सब तो शक्तिशाली भूचाल चो एक बारे अधिकारियों ने कहा कि 4 लोग अजे भी लापता ने, जबकि कुछ टीमां संभावी बचे हुए पीड़ितों लिए नुकसानिया इमारतों की तलाशी लै रही ने। ते आखिर च खास खबर एक बार फिर तो मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होण ते प्रधानमंत्री दे सब तो लंबे समय कार्यकाल की प्राप्ति दे सिलसिले च अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ की नवी दिल्ली च बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों अज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने गए प्रधानमंत्री बनन ते देश विदेश तो वधाई देण दा सिलसिला जारी। सरकार वल्लों राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां लई 95,692 करोड़ दे अंतरिम बजट अलॉटमेंट की तजवीज़ ते विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अज तो बुल्गारिया ते फिनलैंड दे 2 दिना सरकारी दौरे ते। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरां दा ये बुलेटिन खत्म हुंदा है। प्रदेशक खबरां दा अगला बुलेटिन तुसी सुणोगे शाम 6:20 ते। नमस्कार।
3: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं फैसल खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमत अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम किया है। मरकजी काबिना ने तारीखी कामयाबियों की सताइश करते हुए एक करारदाद मंजूर की है। वज़ीर-ए-आज़म की कामयाबियों और सरकार के 12 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के लिए NDA की मीटिंग नई दिल्ली में होने वाली है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के फिजाई हमलों में 11 बच्चों समेत कम अज कम 13 अफराद मारे गए हैं। मगरबी एशिया के खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो गया है।

0: अमेरिका और ईरान के फोर्सेज ने एक दूसरे पर हमले किए हैं और अमेरिका के खलाई इदारे नासा ने आर्टिमिस स्वयं मिशन के लिए खलाबाजों के नामों का ऐलान किया है जिनमें 3 अमेरिका के और 1 इटली का होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा तवील अरसे तक लगातार खिदमत अंजाम देने वाले भारत के जमहूरी तौर पर मुंतखब पहले वज़ीर आज़म बन गए हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड से भी आगे निकल गए हैं जिन्होंने 1952 में 13 मई को मुंतखब वज़ीर आज़म की हैसियत से पहली बार हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पर पंडित नेहरू का दौर हुकूमत 4398 दिन का था जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने ओहदे पर अब तक 4399 दिन काम कर चुके हैं और लगातार काम कर रहे हैं। इस तरह वो भारत की तारीख में सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बन गए हैं। मरकजी काबिना ने आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तवील तरीन मुसलसल मुद्दत के तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने की सताइश करते हुए एक करारदाद पास की। आज कौमी राजधानी में मरकजी काबिना की मीटिंग के दौरान काबिना के मेंबरान ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खड़े होकर इस्तकबाल भी किया। इत्तला-ओ नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव मरकजी काबिना की मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी दे रहे हैं।
1: जल जीवन मिशन, कोल गैसिफिकेशन, ये सारे के सारे फैसले हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बहुत मजबूत नींव बनाने का काम करेंगे जो भारत को लगातार सक्षम बनाने में इनका योगदान रहेगा। धन्यवाद साथियों।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब वज़ीर आज़म की हैसियत से खिदमत अंजाम देने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया ने कहा कि ये तारीखी मौका उनकी क़यादत में मुल्क के अवाम के एतमाद और भरोसे की अक्कासी करता है। मरकजी वज़रा अमित शाह, डॉक्टर एस जयशंकर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, शिवराज सिंह चौहान और दिगर वज़रा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को उनके आज़ाद भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर नेक ख्वाहिशात पेश की। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नबीन, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता और दिल्ली के वज़ीरों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने के मौके पर आज नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामा निगारों से बात करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत ने पूरे मुल्क में एक नई तारीख रकम की है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी की शानदार क़यादत में 25 करोड़ कुंभों को गुरबत से बाहर लाया गया है। जनाब नितिन नबीन ने यह भी कहा कि पिछले 12 साल के दौरान वज़ीर आज़म ने ख़वातीन को बाएख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए मुआशरे के हर तबके की बहबूद और तरक्की के लिए काम किया है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: इत्तला-ओ नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने के मौके पर नई दिल्ली में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। नामा निगारों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने शानदार महारत, इत्मीनान और पुख्ताज़्म के साथ मुल्क की रहनुमाई की है और मुल्क का निज़ाम चलाया है। उन्होंने कहा कि जनाब मोदी ने मुल्क के मुस्तकबिल को नई शक्ल देने और विकसित भारत के नज़रिए की तकमील का अहद कर रखा है।
3: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: आज नई दिल्ली में कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की एक मीटिंग मुनाकिद होगी। ये मीटिंग हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वज़ीर आज़म मोदी के भारत के मुसलसल सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वज़ीर आज़म बनने का जश्न मनाने के लिए मुनाकिद की जा रही है। एनडीए की मीटिंग में इत्तेहाद की हुक्मरानी वाली तमाम 22 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला और तमाम इत्तेहादी पार्टियों के रहनुमा भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और मोदी हुकूमत के 2000

इस मस्ती पर गीत तो बात, फौजी वीरों अगला गीत सुनते हैं, फिल्म सलाम नमस्ते दा। इस गीत नु गाया है कुणाल गांजावाला अते सुनिधि चौहान ने।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोला की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया देश पराया।
2: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। हुन सुनदिया
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में NDA की बैठक होगी।

0: ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
3: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
4: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया। देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण,

0: और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रुपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
2: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ NDA गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
3: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
4: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ

0: लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना सीएनजी की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट एलपीजी के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू पीएनजी कनेक्शन।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के पांचवे बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
1: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए, इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी दा जलंधर केंद्र है। आओ हुण सुनदे हां लोक गीतां दा प्रोग्राम रंगली धरती। अज इस विच तुसी रमनजीत कौर दे गाए लोक गीतां दा आनंद मानोगे।

0: प्रोग्राम चल रहा है रंगली धरती ते तुसी सुन रहे हो इस विच रमनजीत कौर दे गाए लोक गीत। इस तो पहला कि अग्गे वधिए असी लैने आ एक छोटा जिहा ब्रेक, जल्द वापस लौटते हैं।
1: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो जां www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
0: रंगली धरती प्रोग्राम च अगला गीत हाजिर है लट्ठे दी चादर, रमनजीत कौर दा गाया।

कमेटी वालों पाकिस्तान स्थित इतिहासक गुरधामा दे दर्शन लई सिख श्रद्धालुओं दा जत्था जयकारिया दी गूंज नाल रवाना होया। विखी विखे एक मोटरसाइकल रेड़ी अते ट्राले विचकारी होई टक्कर कारण दो नौजवानों दी मौत। अफगानिस्तान दे कुनार कोसत अते पत्तका प्रांता विच पाकिस्तानी फौज दे हवाई हमलों विच बच्चियां समेत 13 लोग मारे गए। ते क्रिकेट विच भारत ए ने कल तिकोनी लड़ी दे पहले मैच विच श्रीलंका ए नू 8 दौड़ा नाल हराया। ए सन हुण तक दियां मुख चोणवीआं खबरां। डीटीएस दी पंजाबी प्रसारण सेवा दा जलंधर केंद्र है। पेश ने हुण तक दियां प्रोग्राम ते उहनां दा वेरवा ते दस दईए कि इस तों बाद तुसीं सुणोगे जी ठीक 3:02 हो रहे ने प्रोग्राम सुनोगे चिट्ठियां मिठियां ते 11:10 तुसीं सुनोगे प्रोग्राम सौगात ते ठीक 12:00 सुनोगे जो है अगले प्रोग्राम होणगे ओह तुसीं सुनोगे ते सौगात होएगा जी फोन इन लैटर ते वट्सअप बेस प्रोग्राम। फिलहाल हुण असी जो है प्रोग्राम जो है तुसीं सुनोगे चिट्ठियां मिठियां ते चिट्ठियां मिठियां विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। मैं हाँ तुहाडी दोस्त कृतिका कौशल ते तुहाडे चिट्ठियां भेजियां होईयां आपां पढ़ांगे ते नाल दे नाल तुहाडे फरमाइश गीतां नूं आपां सुणांगे ते सारे दोस्त रल मिल के जो है चिट्ठियां नूं लिख के भेजदे ने ते उहनां सारयां नूं गुजारिश है कि जद वी तुसीं चिट्ठी लिखदे हो ते साफ हैंड राइटिंग विच लिखिया करो ते हर वार तुसी एक एक 5-5, 10-10 चिट्ठियां एको वार भेज देंदे हो ते इदा ना करिया करो। इस तरह सानू थोड़ी मुश्किलात आंदे ने तुसी बस एको ही चिट्ठी दे नाल तुसी अपनी हाजरी लवा सकदे हो उस प्रोग्राम विच। प्रोग्राम दा नाम चिट्ठियां मिठियां ते आगाज़ करदे हां इस खूबसूरत प्रोग्राम दी इस प्यारे जे गीत दे नाल।

चलो जी, प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां, ते लो जी चिट्ठियां पहुंच चुकियां ने। लिखण वाले ने जमशेदपुर तो हरजिंदर सिंह पाटिया, एंजल पाटिया, नवनीत ते पप्पी पाटिया। पटेल नगर मलौट पंजाब तो डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी, गगनदीप ते बेबी आरजू। कोई भी गीत इन्हां ने किया है। नाभा तो लिख रहे ने सोमदत्त कैरव, ज्योति राणी ते गुरमंत। चकला बाजार समाणा तो लिख रहे ने पप्पू राजा खुशदेल, संगीता जिंदल ते हसमुख जिंदल। मलौट तो जगतार गेल, धर्मजीत कौर, परमजीत गैवी, अमनदीप सुखबीर। बुरज सिद्धवा मलौट तो सरबजोत सिद्धू, अविताज, जगतार ते सारा परिवार। गांधी चौंक रोपड़ पंजाब तो हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जयतेग ते मिका बिरक। ते सुनना चाहते ने मिस पूजा की आवाज़ में प्यारा जगीत है। सुनदे तुसी सुन रहे प्रोग्राम चिट्ठियां मिठियां।

खूबसूरत गीत तुसी हुणे हुणे सुनिया गुरदास मान ते श्रेया घोषाल दी आवाज़ विच। ते मैं गल करी सी सुरमे दी, जे बिल्कुल तुहानू दस दिता कि सुरमा पाउण दे नाल अक्खां सोहणियां वड्डियां

मन्नत नूर दी खूबसूरत आवाज सुनने तो बाद दसदे आं जी कि जांदे जांदे यानी कि 5 मिंट रह गए ने ते जांदे जांदे आपां थोड़ी जी गल कर सकदे आं ना ते मैं दस रही सी कि अखां बारे ते अखां नूं सुंदर बनाउण अते उहनां दी खूबसूरती वधाउण दे लई रोज़ाना अखां नूं ठंडे पानी नाल धो अते 7-8 घंटे दी नींद चंगी नींद जरूर लो। अपनी खुराक विच यानी कि खुराक डाइट विच विटामिन ए सी अते ई नाल भरपूर भोजन जिवें कि गाजर बदाम अते पालक जरूर शामिल करो ते इस दे नाल ही अखां नूं डिजिटल तनाव तो बचाउण दे लई अपनी अखां नूं या अपने आप नूं जो है मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन या लैपटॉप दी स्क्रीन तो दूर रखोगे तो तुहाडियां अखां बहुत ही खूबसूरत रहणगियां। नहीं ते तुहानूं पता ही है कि 2 अखां तो बाद 4 अखां होण च टाइम नहीं लगदा। हुण 4 अखां तुसीं कहोगे कि 2 तां अपणियां ते 2 चश्मे दियां ते नेल लगाना चाहते ना कि तुहानू कोई चश्मिच कवे। चलो खैर लग भी गई तो वह तुसी अपने आप जिम्मेवार हो तो इस दे लई बचाओ दे लई विटामिन ए सी ते ई नाल भरपूर भोजन जिवें कि मैं तुहानू दस दिता है कि वह जरूर लो, फाइबर जरूर लो, अपने जो है पेट नू साफ रखो, जो है फास्ट फूड ना खाओ, बाजार दी चीज़ां ज़्यादा ना खाओ तो चंगा रहेगा। तो इस तों इलावा

नमस्कार। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले शाम दे 4 वज गए ने। हुण साडी अज दी दूजी सभा शुरू हुंदी है। सभा दी शुरुआत सुनदे हां न्यूज़ हेडलाइंस। केंद्रीय मंत्री मंडल ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे लगातार सब तो लंबे समय तक सेवा करन वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनन ते शलाघा करदे हुए एक मता पास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों आज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनन ते देश विदेश तो वधाई देण दा सिलसिला जारी। सरकार वल्लों राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां लई 95,692 करोड़ दे अंतरिम बजट अलॉटमेंट दी तजवीज़। केंद्रीय पेट्रोलियम अते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा देश विच CNG दी कोई कमी नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज तो बुल्गारिया अते फिनलैंड दे 2 दिना सरकारी दौरे ते। हरियाणा राज महिला कमीशन दी चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। सूबा सरकार ने पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड की पेपर मुलंकन प्रणाली विच बदलाव करदिया बोर्ड परीक्षावां विच बराबर अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों नूं हुण बराबर रैंक देण दा फैसला किया। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पाकिस्तान स्थित इतिहासक गुरधामां दे दर्शनां लई सिख श्रद्धालुओं का जत्था जयकारियां की गूंज नाल रवाना होया। भीखी विखे एक मोटरसाइकिल रेहड़ी अते ट्राले विचकार हुई टक्कर कारण 2 नौजवानों की मौत। अफगानिस्तान के कुनार खोस अते पतिका प्रांता विच पाकिस्तानी फौज के हवाई हमलों विच बच्चियां समेत 13 लोग मारे गए। अते क्रिकेट विच भारत ए ने कल त्रिकोणी लड़ी के पहले मैच विच श्रीलंका ए नू 8 दौड़ा नाल हराया। ए सी अज दियां न्यूज़ हेडलाइंस। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ से ए आकाशवाणी का जलंधर केंद्र है। आओ हुण आनंद माणदे हां सदाबहार फिल्मी गीतां दा। ते पहला गीत सुनदे हां मुकेश जी दी आवाज़ विच। फिल्म दा नाम है संगम।

दीन दुनिया तेरी टेक, सब मह रविया साहिब एक। अकाल पुरख न्योट्यां दी ओट, नितरियां दी तिर, न्यासरियां दा आसरा है। टेक, आसरा, पना, ए समान अर्थी शब्द हन, पर ए सच है कि टेक, आसरा, ओट, शरण उसे दी लुड़ींदी है जो अपने आप तो ताकतवर है, समर्था वाला है। तांते फिर अकाल पुरख प्रभु अग्गे दीना वांगू बेनती करनी चाहिदी है। हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या की जाए, बचनी तोर मोर मन माने, जन काओ पूरन दी जाए। सरवण करदे आं भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

हम सर दीन दयाल न तुम सर, अब पतियार क्या की जाए। बचनी तोर मोर मन माने, जन काओ पूरन दी जाए। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द। प्रभु दा ओट आसरा टेक शरण कल्याणकारी है। प्रभु दे चरण शरण विच किसे प्रकार दा दुख नहीं व्यापदा। ऐसे नाम दी प्राप्ति हुंदी है जिसनू जपिया अकाल पुरख प्रभु किरपा करके अपने प्यारियां दी बांह फड़के उन्हां नू पव सागर तो पार कर दिंदा है। राग तनासरी विच गुर फरमान है, हर चरण सरन गोबिंद दुख पंजना, दास अपने कौ नाम देवो, दृष्ट प्रभतारो कृपा करता रहो, पूजा गह कूप ते काड लेवो। सरवण करदे आं भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: हर चरण शरण गोविंद दुख पंजना, दास अपने कौ नाम देवो, दृष्ट प्रभ तारहो कृपा करता रहो, पूजा गहकूट ते कार्ड लेवो। इस शब्द का गायन कीता सी भाई गुरमीत सिंह शांत ते उन्होंने रागी जत्थे ने। हुण सरवण करदे हां इस शब्द की व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी बलवंत सिंह।
1: तनासरी महला पंजवां, कर नौवां पड़ताल, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर चरण सरन गोविंद दुख पंजना, दास अपने को नाम देवो, दृष्ट प्रभ तारू कृपा कर तारू, पूजा गह कूप ते काढ़ लेवो रहाओ। काम क्रोध कर अंध माया के बंद, अनक दुखा तन शाद पूरे, प्रभ बिना आन न राखण हारा, नाम सिमराव हो सरन सूरे। पतत उदारणा जी जंत तारणा, वेद उचार नहीं अंत पायो, गुण है सुख सागरा, ब्रह्म रत्नागरा।

सरनी आयो नाथ निधान, नाम प्रीत लागी मन पीतर, मागन कौ हर दान। आप जी सरवण कर रहे सो भाई बलबीर सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
1: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20

0: वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी थी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ऐसे वेले 6:05 हुए नी साडी स्टूडियोज़ की कड़ी के मुताबिक हुण पेश है जी प्रोग्रामां दा वेरवा।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: सत श्री अकाल पंजाबियो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वालों सहभागी न्याय ते कर न्याय लई एक इतिहासिक पहल की गई है, जिथे मिलेगा तुहाडे केस नूं

0: अत्यंत सम्मानजनक हल। हिस्सा बनो समाधान समारोह 2026 दा 21-22 ते 23 अगस्त नू सुप्रीम कोर्ट विच विशेष लोक अदालत लग रही है।
1: पर की उस दे लई मेनू दिल्ली जाना पाएगा?
0: जरूरी नहीं, तुसी ऑनलाइन भी जुड़ सकते हो।
1: अप्लाई किवें करिए?
0: सुप्रीम कोर्ट दी वेबसाइट www.sei.gov.in ते गूगल फॉर्म राही बेनती भेजो। याद रखो आखिरी तारीख 31 मई 2026 है। सहायता लई 011-23-11-2428 ते संपर्क करो।
1: समाधान समारोह 2026 आपसी सहमत ते पक्का निपटारा।
2: सरकार दे माण मत्ते 12 साल पूरे होण ते आकाशवाणी दा समाचार सेवा विभाग 1 जून तो प्रसारित कर रहा है 21 लड़ियां दा एक विशेष प्रोग्राम। 35 मिनट दे इस प्रोग्राम दा प्रसारण होंदा है रोजाना शाम 7:10 तो लेके 7:45 तक। इसलिए शाम 7:30 प्रसारित होने वाली पंजाबी खबरों का प्रसारण रोज शाम 7 किया जा रहा है। सरकार के माण मत्ते 12 सालों की कामयाबी की कहानी आकाशवाणी के समाचार सेवा विभाग की जुबानी।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1 ए परिवारक सिलसिला तुसी सुन सकदे हो हर बुधवार शाम 6:30 देहाती प्रोग्राम दे विच। परिवारक लड़ीवार फैमिली नंबर 1।

0: विशाल दा ना, सब कुछ सही चल रहा है।
1: कल दे बैंक खाते विच 15,000 रुपए दा फ्रॉड होया है, पता है?
0: पर इन्हों तक को टेंशन ही नहीं, देखना।
2: टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं सी, फिर भी फ्रॉड होने ते मैं तुरंत बैंक नूं इहदी खबर दित्ती। RBI कहिंदा है जे तुहाडे खाते चों किसे ने धोखे नाल पैसे कढवाए ने तां बैंक नूं छेती तों छेती खबर करो। 3 दिनां दे अंदर कीती तां कोई नुकसान नहीं होवेगा, जिन्नी देर करोगे उन्ना वध नुकसान। अपने बैंक खाते दा पिन, पासवर्ड अते OTP किसे नूं भी ना दसो। RBI कहिंदा है जानकार बनो, सचेत रहो।
3: असीं आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। हुण सुणदे हां देश गान।

0: आजो आजो आजो संधु साहब, आजो बचाड़ो
1: आ गए
0: आजो।
1: जी, आ गए जी, आ गए। जय हिंद जी, रुड़िया राम जी, जय हिंद।
0: जय जी संधु साहब, बचाड़ो की हाल चाल है?
1: हाल चाल वधिया जी, अपना सुनाओ।
0: तगड़ा। देखो, जिदा आप कहने हाँ कि जिंदगी दे विच द्वंद चलता रहिंदा इंसान दा, ता जिंदगी प्राप्तियां नूं लै के
1: अपने आप नाल भी ते समाज नाल भी।
0: समाज नाल भी, क्योंकि साडा जिहड़ा इच्छावां साडे ते इन्नियां ज़्यादा भारू है कि एक पूरी हुंदी है ते तिन खड़ियां हुंदियां नाल दी नाल, ते द्वंद इस करके खत्म नहीं हुंदा। जे किते संधू साहब बंदा स्वीकार करना शुरू कर दे कि मेरे कोल जो है जां जो मालक ने मैनूं दित्ता यही मेरा हिस्सा है, ते फिर किते ना किते जदों द्वंद खत्म हुंदा है ते फिर जिंदगी दे विच स्वाद जां जिंदगी दे विच आनंद शुरू हुंदा है। होर बाकी तुसी किसे तरह जिंदगी दा स्वाद पैदा नहीं कर सकते, जिंदगी तो आनंद नहीं लै सकते जब तक तुसी चीज़ नूं स्वीकार नहीं करते।
1: पर देखो ना, हुण अपने इंसानियत जिदा कह लो तमा नहीं मरदी
0: हाँ,
1: कि मैं होर इकट्ठा करा,
0: उही है ना,
1: होर इकट्ठा करा।
0: होर इकट्ठा करन दे चक्कर च आप इकट्ठा हो जांदा ना फिर। सो इस करके है कि जिंदगी जिहड़ी है ये सिर्फ इकट्ठा करन लई नहीं है, जिंदगी तो जिदा कहने कि जीवन लई दित्ता तुहानू मालक ने, कार्ज करन लई, आपां
1: बिल्कुल
0: कार्ज करन
1: बिल्कुल
0: लई
1: जी।
0: है।
1: आप कई बार कहने उन्हें रुड़िया राम जी कि बंदा सारी जिंदगी
0: हाँ
1: मेहनत करता है,
0: आह,
1: पर उही चीज ओदे काम नहीं आउंदी कई बार।
0: काम नहीं आउंदी जी, तां खोजां भी महाराज ने कीतियां, डॉक्टर साहब ने खोजां करके जिन्हें भी दुनिया भर दे भी जिहड़े अंतले समय ते लोग हुंदे आ ना वो यही पछतावे च हुंदे आ कि यार मैं जिंदगी दा स्वाद नहीं लै सकिया,
1: नहीं लै सकिया।
0: ते जिंदगी दा स्वाद तुहानू जिंदगी ने नहीं देना, वो तुसी जिंदगी चो आप लभना है, ते वो तुहाडी मानसिकता नहीं लभना है। तुहाडी मानसिकता किदां
1: एक
0: दी है?
1: देखो रुड़िया राम जी, शेर है शहर दा कि जिन्हां लई तू मरदा रहा
0: हाँ
1: सारी उम्र,
0: बिल्कुल,
1: हुण उही कहिंदे ने तू मर क्यों नहीं जांदा।
0: जांदा आज के जाइए,
1: हाँ जी,
0: ये सच्चाइयां ने। देखो ये कौड़े
1: हाँ।
0: सच है, ताही ते मैं कह कि स्वीकार जिहड़े असीं कर लईए ना कितें ना कितें फिर सानू जिहड़ा है इस जिंदगी दा मकसद मतलब और स्वाद ये पता चलना शुरू
1: अपने
0: होगा।
1: लिए भी कुछ करना
0: अपने
1: चाहिए।
0: लिए भी कुछ करना चाहीदा है, ये तो सारी उम्र असीं दूजियां लई करदे रहिंदे आ, मैं न्याणे लिए आ करदा, ये न्याणे लिए आ करदा, यही चक्कर च जिहड़ा है तुरे फिरदे आ। सो इस करके अपने लिए आपां कितना जीना है, अपने लिए कितना जीना है।

0: हां जी रुलिया राम जी।
1: संधू साहब, सौनी दी फसलां जिदा आपां सारियां फसलां दा आधार तां हुण खादा रह गईआं, ते पर इह है कि जे खादा नूं संजम नाल, संकोच नाल ते सुचजे ढंग नाल वरत्या जावे ते खाद जिहड़ी है उह साडे लई उपयोगी है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरां इस बुलेटिन नाल मैं चंचल शर्मा। पहला बुलेटिन दियां खास खबरां। मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होने के सिलसिले च अज राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ NDA की नवी दिल्ली च बैठक जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अज एक मता पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने की बधाई दी। देश विदेश तो भी बधाई देने का सिलसिला जारी। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय जल सेना वास्ते भी उन्नत समर्था वाले ग्लोबल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमरा की खरीद लई 449 करोड़ के समझौते ते दस्तखत किए। हरियाणा राज महिला कमिशन की चेयरपर्सन रेणू भाटिया ने अपने अहुदे तो अस्तीफा दिता। अफगानिस्तान खिलाफ 3 मैचों की एक रोजा लड़ी तो पहला हार्दिक पांड्या 60 कारण टीम तो बाहर हुए। राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ NDA की मीटिंग अज नवी दिल्ली चल रही है। यह मीटिंग NDA सरकार के 12 साल पूरे होने और भारत के सब तो लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री वजों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के सिलसिले की जा रही है। सारिया गठजोड़ पार्टियां के आगू नाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत BJP के चोटी के आगू मीटिंग हिस्सा लै रहे हैं। 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के नाल सारिया गठजोड़ पार्टियां के आगू भी इस मीटिंग शिरकत कर रहे हैं। BJP प्रधान नितिन नवीन, तेलगू देसम पार्टी के मुखी चंद्रबाबू नायडू, जनता दल यूनाइटेड के आगू संजय झा, शिवसेना प्रधान एकनाथ शिंदे समेत होर भी इस पार्टी च हिस्सा लै रहे हैं। यह मीटिंग वख-वख राष्ट्र विकास प्रोग्रामा, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामा अते 2047 तक देश नूं एक विकसित राष्ट्र विच बदलन दे मोदी सरकार दे दृष्टिकोण की समीक्षा ते केंद्रित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अज एक मता पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब तो लंबे समय तक सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनने ते वधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग तो बाद नवी दिल्ली च पत्रकारां नाल गलबात करदिआं सूचना ते प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा,
1: आज श्री नरेंद्र मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक निरंतर देश की सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्होंने निर्वाचित PM के तौर पर 4,399 दिन की निरंतर सेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। इससे पूर्व श्री जवाहरलाल जी नेहरू ने 1952 से लेकर 1964 तक निरंतर 4,398 दिन तक इस पद को सुशोभित किया था। मुख्य बात यह है, यह अवसर भारत की लोकतांत्रिक चेतना, जन विश्वास और जन भागीदारी की शक्ति का प्रतीक है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज भारत के सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनन ते देश विदेश तो वधाई देने का सिलसिला जारी है। विश्व नेतावां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं इस मौके वधाई दित्ती। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने एक पत्र च कहा कि प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण ने श्रीलंका समेत भारत दीआं सरहदां तों परे बहुत सारे लोगों नूं प्रेरित कीता है। इस तों इलावा त्रिनिदाद अते टोबैको दे प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई हेठ भारतीय आलमी मामलों ते एक मोहरी आवाज़ वजों विकसित होया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ते उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नूं इस मौके ते वधाई दित्ती है। विदेश मंत्री डॉक्टर अजय शंकर, वणज ते उद्योग मंत्री पीयूष गोयल समेत होरना केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस मौके वधाई दित्ती है। उद्योगपतियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी को 12 साल पूरे करने ते वधाई दित्ती। विकी दे प्रधान अनंत गोयंका ने कहा कि पिछले 12 सालों च भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी की अगुवाई हेठ भारत न सिर्फ एक मोहरी आर्थिक शक्ति वजों उभर है, बल्कि विश्व पद्धर से भारत की भरोसेयोगता भी वधाया है। CII के डायरैक्टर जनरल चंद्रजीत बैनर्जी ने कहा कि इस समय दौरान भारत ने कई मोर्चों से महत्वपूर्ण तरक्की हासिल की है। SOCHM के सकत्र जनरल सौरभ सान्याल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वधाई देंदिया कहा कि उन्होंने दूरदर्शी अगुवाई ने समावेशी विकास को तेज किया है, भारत में व्यापारक गतिविधियों को मजबूत किया है। रक्षा मंत्रालय ने अज भारतीय जल सेना लई भी उन्नत समर्था वाले ग्लोबल नैविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमरा की खरीद वास्ते 449 करोड़ के समझौते

0: ਜਦੋਂ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਕੂਨ ਵੀ ਉਜੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੀਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ये आकाशवाणी का जालंधर केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी वार्ता प्रोग्राम में कमलेश गुप्ता की कहानी सफलता की भाप।
2: रात के 3:30 बजे थे। पूरी बस्ती गहरी नींद में थी, लेकिन एक छोटे से घर की रसोई में हल्की पीली रोशनी जल चुकी थी। एल्यूमिनियम के बड़े बर्तन में खमीर उठा खोल रखा था, चूल्हे पर सांभर उबल रहा था और भाप से भरे उस छोटे से कमरे में खड़ी थी शांति। लोग उसे नाम से कम इडली अम्मा कहकर ज़्यादा बुलाते थे। 20 साल से उसकी सुबह सूरज उगने से पहले होती थी। हर दिन वही क्रम, चावल पीसना, नारियल घिसना, स्टील के डिब्बे जमाना और फिर सुबह होने से पहले अपना ठेला लेकर निकल जाना। गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात, उसकी ज़िंदगी कभी नहीं रुकी। लेकिन उस सुबह कुछ अलग था। आज उसने पहली बार अपने ठेले पर आज बंद रहेगा का कागज़ लगाया था। उसकी पड़ोसन सरला ने हैरानी से पूछा था, अरे शांति, तबीयत तो ठीक है ना, तूने आज ठेला बंद करा है? शांति हल्के से मुस्कराई, नहीं रे, आज मेरे बेटे ने बुलाया है अपने ऑफिस। सरला की आंखें चमक उठी। अच्छा, बड़ी नौकरी करता है ना तेरा संदीप? शांति ने साड़ी की पल्लू ठीक करते हुए धीमे से कहा, क्या करता है, कितना बड़ा काम है, ये सब तो मुझे समझ नहीं आता। बस इतना पता है बहुत मेहनत करता है। उसके बेटे का नाम था संदीप। सीधा साधा, कम बोलने वाला, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत। जब बाकी बच्चे गली में क्रिकेट खेलते थे, संदीप अपनी माँ के साथ इडली के डिब्बे जमाया करता था। उसके पिता जब घर छोड़कर चले गए तब संदीप सिर्फ 9 साल का था। उस रात शांति पूरी रात रोती रही थी, लेकिन अगली सुबह जब उसने भारी पतीली को उठाने की कोशिश की तब छोटे से संदीप ने आगे बढ़कर कहा, अम्मा तुम रहने दो, मैं पकड़ लेता हूँ। उस दिन पहली बार शांति को लगा कि उसका बेटा अचानक एक ही दिन में बड़ा हो गया है। धीरे धीरे जिंदगी और कठिन होती गई। ठेले का किराया, घर का राशन, स्कूल की फीस। कई रातें ऐसी भी थीं जब शांति खुद सिर्फ पानी पीकर सो गई, लेकिन उसने बेटे की किताबें कभी अधूरी नहीं रहने दी। संदीप भी सब समझता था। वो स्कूल से लौटकर सीधे ठेले पर आ जाता, ग्राहकों को प्लेट देना, पैसे गिनना और रात को बर्तन धोना और फिर देर रात तक पढ़ाई। कई बार शांति उसे देखती और कहती, इतना मत पढ़ बेटा, आंखें खराब हो जाएगी। संदीप हंस देता, अभी आंखें थकेगी अम्मा, तभी तो आगे की जिंदगी आसान दिखेगी। शांति को उसकी आधी बातें समझ आती थी, आधी नहीं, लेकिन उसे अपने बेटे की आंखों में भरोसा दिखता था। समय बीतता गया। संदीप ने स्कॉलरशिप निकाली, बड़े कॉलेज में दाखिला मिला, फिर शहर की नामी कंपनी में नौकरी। अब उसके कपड़े बदल गए थे, बात करने का तरीका बदल गया था, मोबाइल पर अंग्रेजी ज़्यादा हो गई थी। लेकिन हर महीने की पहली तारीख को पैसे आते ही सबसे पहले शांति के घर राशन पहुँचता था। एक दिन अचानक संदीप का फोन आया, अम्मा अगले शुक्रवार खाली रहना। माँ ने बोला, क्यों? ऑफिस में एक कार्यक्रम है, आपको आना है, संदीप ने बताया। शांति हंसी, मैं वहाँ क्या करूँगी, बड़े लोगों की जगह होगी। संदीप कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अम्मा मेरे लिए सबसे बड़ी आप हो। शांति मुस्करा दी। उसने ज़्यादा सवाल नहीं किए। उसने अपनी वही पुरानी हल्की गुलाबी साड़ी निकाली, वो साड़ी जो उसने बहुत संभाल के रखी थी, पहली बार अपनी छोटी ननद की शादी में पहनी थी और दूसरी बार संदीप

स्कूल के सम्मान समारोह में, और आज तीसरी बार अपने बेटे के कहने पर पहन रही थी। उसने साड़ी की किनारी को प्यार से हाथों से ठीक किया, जैसे कपड़ा नहीं कोई पुरानी याद सहला रही हो। फिर चुपचाप 200 रुपए अलग रख दिए ऑटो के लिए। शुक्रवार की सुबह जब उस विशाल कांच की इमारत के सामने पहुंची तो उसके कदम खुद ब खुद धीमे पड़ गए। इतनी चमक, इतनी सफाई, इतने बड़े बड़े दरवाजे। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, मैम आपका नाम? जी मैं शांति, संदीप की माँ। लड़की तुरंत खड़ी हो गई। ओह मैम, आप ही कहाँ हम इंतज़ार कर रहे थे। शांति घबरा गई। मेरा? जी मैम, कृपया आप हमारे साथ चले। उसे एक बड़े सभागार में ले जाया गया। सामने मंच था, चारों तरफ रोशनी, सैकड़ों लोग, और सबसे आगे एक सीट पर लिखा था मिसेस शांति। वो घबरा गई। बेटा कहीं गलती से तो मुझे आप यहाँ नहीं बिठा रहे हो? साथ खड़े कर्मचारी ने मुस्करा कर कहा, नहीं मैम, ये सीट सिर्फ आपके लिए है। शांति बैठ तो गई लेकिन उसका दिल बेहद तेज़ी से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा, महंगे कपड़े पहने लोग, धीमी अंग्रेजी में बातचीत, हाथों में लैपटॉप, और उसे बीच पीछे बैठे दो लोग जो आपस में बात कर रहे थे। आज कंपनी के नए मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम अनाउंस होगा। शांति को कुछ समझ नहीं आया। उसने बस इतना सोचा कि लगता है कोई बहुत बड़े साहब आने वाले हैं। कुछ देर बाद रोशनी धीमी हुई। मंच पर कंपनी के चेयरमैन आए। उन्होंने कंपनी की सफलता, भविष्य और नए नेतृत्व की बातें शुरू की। लेकिन शांति का ध्यान उन बातों में कहाँ था? शांति की आंखें तो अपने बेटे को ढूंढ रही थीं। तभी अचानक स्क्रीन पे एक तस्वीर उभरी। पुराना सा ठेला, भाप उड़ाती इडली और पीछे खड़ी शांति। स्क्रीन पर अपनी तस्वीर देखते ही शांति कुछ पल के लिए चढ़ हो गई। उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक गई और दिल की धड़कनें अचानक बहुत तेज़ हो गई। फिर दूसरी तस्वीर, छोटा सा संदीप स्कूल ड्रेस पे ठेले पर प्लेट लगाते हुए। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। शांति की आंखें भर आई। तभी मंच के पीछे से आवाज़ आई, मेरी माँ कहती थी, गरीबी घर में हो तो चल जाता है, बस हिम्मत में नहीं होनी चाहिए। स्पॉटलाइट चली और मंच पर संदीप खड़ा था, ब्लैक सूट में, आत्मविश्वास से भरा, लेकिन आंखों में वही पुराना अपनापन। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। संदीप धीरे धीरे माइक तक आया और उसने माँ की तरफ देखा और मुस्करा कर कहा, मैंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े लोगों से मुलाकात की है, लेकिन सबसे मजबूत इंसान मुझे आज भी वही लगती है जो हर सुबह 4 बजे उठकर इडली बनाती थी। हॉल एकदम शांत था। जब मेरे पास किताबें नहीं थी, इन्होंने अपने गहने बेच दिए। जब फीस नहीं थी, इन्होंने दो दो शिफ्ट में ठेला लगाया, और जब मैं हारने लगा था तब ये कहती थी, थक जाना लेकिन रुकना मत। अब कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थीं। संदीप की आवाज़ भारी हो गई। आज लोग मुझे इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कहेंगे, लेकिन सच ये है कि मैं आज भी उसी ठेले वाली माँ का बेटा हूँ। इतना कहकर वो मंच से नीचे उतरा, अपनी माँ के सामने आकर रुका और सबके सामने झुक कर उनके पाँव छू लिए। शांति घबरा गई। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो? संदीप ने माँ की तरफ देखते हुए कहा, जिस माँ ने मेरी जिंदगी संवारने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसके सामने झुकने में भला शर्म कैसी। पूरा सभाकार खड़ा हो गया। तालियों की आवाज़ लगातार गूंजती रही और शोर के बीच शांति ने कांपते हाथों से बेटे का चेहरा छुआ और धीरे से पूछा, बेटा सुबह से तुमने कुछ खाया है? संदीप हंस पड़ा। आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर वही बचपन वाले मुस्कान। क्योंकि माँ चाहे बेटे को कितना भी बड़ा आदमी बनते देख ले, उसके लिए हमेशा वही बच्चा रहता है जो कभी स्कूल जाते वक्त आधी इडली छोड़कर भाग जाता था। उस दिन उस मंच पर सिर्फ एक नए मैनेजिंग डायरेक्टर का स्वागत नहीं हुआ था, सम्मान

0: हुआ था उन अनगणित माओं का जो खुद धूप में जलती हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य उजाले में रह सके। क्योंकि दुनिया अक्सर सफलता के मंच पर खड़े इंसान को देखती है, लेकिन उस मंच तक पहुंचाने वाले फटे हाथों को नहीं देखती। हर बड़ी ऑफिस, हर ऊंची कुर्सी और हर चमकती पहचान के पीछे कहीं न कहीं किसी माँ की अधूरी नींद, किसी पिता का टूटा सपना या किसी गरीब घर का चुपचाप किया त्याग छुपा होता है। इसलिए कभी किसी छोटे काम को छोटा मत समझिए, क्योंकि कई बार सड़क किनारे लगाने वाला एक छोटा सा ठेला भविष्य के सबसे बड़े सपनों की नींव बन जाता है। और याद रखिए, संघर्ष कभी इंसान को छोटा नहीं बनाता, संघर्ष ही इंसान को उस ऊंचाई तक लेके जाता है जहाँ पहुंचकर पूरी दुनिया खड़े होकर तालियां बजाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी वार्ता प्रोग्राम में कहानी सफलता की भाव। वाचिका कमलेश गुप्ता। असी आकाशवाणी दी जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुन पेशे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

जिंदगी हसीन है सुन वाले सारे ही श्रोतिया नु सोनिया सैनी दा नमस्कार जी। श्रोतियो तुसी आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते इस प्रोग्राम दा आनंद माण रहे हो। केंद्र की सच्चा प्यार ओ है जो निष्काम होवे, किसे स्वार्थ तो बिना किता जावे, एक दूजे की इज्जत भरोसे ते समझ ते आधारित हुंदा है। समर्पण का अर्थ है अपने रिश्ते प्रति पूरी निष्ठा ते वफादारी रखना। सच्चे प्यार विच सुख दुख हर हालात का मिल के सामना किया जाता है। इस विच त्याग धीरज ते एक दूजे दीआं भावनावां दी कदर भी शामिल हुंदी है। समर्पण रिश्तियां नूं मजबूत ते लंबे समय तक कायम रखता है। सच्चा प्यार समर्पण जीवन नूं खुशहाल ते अर्थपूर्ण बनाता है।

0: एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।
1: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनने वाले दा स्वागत करते हैं जी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते। तुसी इस वेले सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ, जिंदगी एक किताब वांग है। हर एक दिन नवा सफा हुंदा है। गलतियां तो सीखो ते हार तो कदे डरो ना। मुश्किलां ही तुहानू मजबूत बनाउंदियां ने। सबर ते मेहनत कदे भी व्यर्थ नहीं जांदे। अपने सुपनियां ते भरोसा रखो। हर सवेर नवी उम्मीद लैके आउंदी है। अगे वधदे रहो ते यकीन मनो, मंजिल जरूर मिलेगी।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजिही कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।
3: मुंह मिठा करन लगे हो, नौकरी लागे लग दी है, मुबारका फेरते, पर किते उन्होंने नौकरी देन तो पहला कोई पैसे जमा करवाउन दी गलता नहीं कही। जे कही है तो फिर जागरूक बनो, ध्यान रखो, क्योंकि आजकल ए ठगण दे नवे तरीके ने, क्योंकि नौकरी देन वाले कदे भी पैसे नहीं मांगदे।
4: साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी की जानकारी लई 1930 हेल्पलाइन नंबर डायल करो या www.cybercrime.gov.in ते शिकायत दर्ज करवाओ।
5: अंतराल तो बाद एक बार फिर तो सारे ही सुनने वाले का स्वागत करते हैं जी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र ते। तुसी इस वेले सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है।

प्यार करो। दूजियां दी मदद करना कदे ना भुलो। कहिंदे ने कि खुशी जिहड़ी है ओह वंडन दे नाल दुगनी हो जाती है। सो जिंदगी होर सोहनी बन जाएगी। बस तुसी इन्हां चीज़ां नूं अपना के तो वेखो, जिंदगी अपने आप हसीन बन जाएगी। ते इसे दे नाल ही मैनू सोनिया सैनी नूं प्रोग्राम जिंदगी हसीन है खत्म करन दे दिओ इजाजत। फिर मिलांगे इसे ही प्रोग्राम च, तद तक लई रब रखा।

0: प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वह आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का इस सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और NDA शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के

0: साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
3: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5-7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled, says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi.

चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर

0: अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़े पैगाम लगे, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत यूएन जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारे प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका ये कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के इस सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे, तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं,

0: आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांधकर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बी फिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहां, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है, जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व करते पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कि कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से, जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा

पैकेट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट।

0: ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है, आज DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड रेशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव-गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव-गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में

0: अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे, और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा हुआ पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिये ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख पे अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है, और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले, और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में, कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है, इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर सेक्शन की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ, दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है जैसे दिल्ली पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार

0: से एक इंप्रेशन था भाई, बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है आनंद जी। जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं, आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे। कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत की संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ, क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सबको लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहां, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है, हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे, जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे।

0: उनका नाम बदल कर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहाँ परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भाव, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है, वो आनंद जी मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है। असि आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। इस वेले 10 बजने हुण पेश ने मुख खबरां। मोदी सरकार दे 12 साल पूरे होने ते सिलसिले च राष्ट्रीय लोकतंत्र गठजोड़ की मीटिंग अज नवी दिल्ली च हुई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अज एक मता पास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू सब तो लंबे समय तक सेवा करन वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनन ते वधाई दित्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों अज भारत दे सब तो वध समय तक सेवा निभाउण वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बनन ते देश विदेश तो वधाई देण दा सिलसिला जारी है। सरकार वालों राज्यां ते केंद्र शासित प्रदेशां लई 95,692 करोड़ दे अंतरिम बजट अलाटमेंट की तजवीज़। भारत सरकार ने पंजाब दे सौनी सीजन 2026 लई यूरिया की मजबूत उपलब्धता नू यकीनी बनाया। सूबे विच यूरिया की कोई

कमी नहीं। पंजाब सरकार वालों पटियाला विच हाइब्रिड सफाई मॉडल का आगाज, सूबे का सब तो साफ सुथरा शहर बनाने लई 30 दिनों का टीचा मिथ्या। समाजिक सुरक्षा महिला अते बाल विकास विभाग वालों जिला मानसा दी एक बुजुर्ग औरत दी शिकायत ते तुरंत दखल दिंदिया मामले दी जांच, मुलजम नूं कीता गिरफ्तार। पंजाब पुलिस मुखी गौरव यादव ने पंजाब पुलिस दिया महिला पुलिस अधिकारियों लई 93 दो पहिया इलैक्ट्रिक वाहनों नूं रवाना कीता। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पाकिस्तान स्थित इतिहासिक गुरुधामां दे दर्शनां लई सिख श्रद्धालुआं दा जत्था जयकारियां दी गूंज नाल रवाना होया। हरियाणा राज महिला कमीशन दी चेयरमैन रेनू भाटिया ने अपने अहुदे तों अस्तीफा दिता अते अफगानिस्तान खिलाफ 3 मैचां दी एक रोजा लड़ी तों पहलां हार्दिक पंड्या सट कारण टीम तो बाहर होए। सो एसीजी मुख खबरां। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। हुण पेश है प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश।

0: एक दो तीन हो जाती है, एक दो तीन हो जाती है।
1: थोड़ी फरमाइश प्रोग्राम तुसी सुन रहे हो आकाशवाणी ते जलंधर केंद्र ते। व्हाट्सएप राही जिहड़ी फरमाइशां साडे कोल पहुंचियां ने जी, फरमाइशां वल वधदे आं। इह फरमाइश सानूं भेजी है रमन वर्मा होना ने बुरजा तों, लोको कलोनी लोहारू हरियाणा तों सानूं फरमाइश भेज रहे ने बिल्लू सिंह चंडालिया, लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार चंडालिया, बरखा योगेंद्र कुमार नरेंद्र कुमार ते इन्हां दे बहुत सारे साथी सानूं फरमाइश भेज रहे ने। बागपत उत्तर प्रदेश तों संजय टिंगिया, नमन टिंगिया ते अपार टिंगिया, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष ते इन्हां ते बहुत सारे साथी सानूं फरमाइश भेज रहे ने। पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश तों, नर्मदा पाक मंगलवेड़ा तों सानूं फरमाइश भेजी है मास्टर अलिम पटेल, मुजाहिद पटेल ते नदीम पटेल होना ने। मखू तों बिला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी, मनीष बजाज ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। सदर बाजार कुरावली तों अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार ते सोनम वर्मा। आओ सुनदे इन्हां सारे दी मिली जुली फरमाइश। फिल्म जूली दा गीत, आवाज़ है जी किशोर कुमार ते लता मंगेशकर दी।

0: ਸੁਣਿਆ ਮੈਡਮ, ਨਮਸਕਾਰ।
1: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हो?
0: ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ ਬੋਲਦਾ ਮੈਮ, ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ।
1: जी सुखबीर जी, स्वागत करते हैं प्रोग्राम च।
0: ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਡਮ ਜੀ।
1: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ।
0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਯੂਅਰ ਵੌਇਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਵੀਟ ਨਾਈਸ ਜੀ।
1: थैंक यू जी। ते आज दी फरमाइश वाल वद्दे हैं जी, केड़ी फरमाइश दस रहे हो आज दी?
0: मैडम जी, आशिकी मूवी दा ला दो दिल का आलम, मैं क्या बताऊं तुझे।
1: ते लो जी, सुनो फिर अपनी पसंद आई खूबसूरत गीत। बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने दे लई।
0: थैंक्स मैम, थैंक्स, बाय।
1: माय प्लेजर जी।

आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र ते तुसी इस वेले सुन रहे जी प्रोग्राम थोड़ी फरमाइश। फरमाइशी सिलसिला बिल्कुल जारी है जी, ते व्हाट्सएप राही जिहड़ी फरमाइश साढ़े कोल पहुंचिया ने जी, वध्दे उहनां फरमाइशां वल। कंगनपुर तों फरमाइश भेजी है जी जाफर मेव, अब्दुल गफूर, मुहम्मद शरवर होना ने, गिद्दड़बाहा तों मनजीत तनेजा, परवीन, पायल, नीता शाह, हिना शाह ते इन्हां दे बहुत सारे साथी सानूं फरमाइश भेज रहे ने। तृप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, भूमिका ते गगनदीप थांदी सानू फरमाइश भेज रहे ने। पिंड ते डाकखाना टोरोवाल, तहसील बलाजौर, जिला नवांशहर तो। अस्तुपुरा जिला माऊ तो मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर तो आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद ते इन्हां ते बहुत सारे साथी सानू फरमाइश भेज रहे ने जी। महसगेट नाभा तो ज्योति राणी, कैरव ते गुरमन सानू फरमाइश भेज रहे ने। दलसरा सहारनपुर तो सानू फरमाइश भेजी है अनवर साबरी, शनो साबरी, मुदस्सिर मुजक्कर और जरीफ अंसारी होना ने। अवतार सिंह पन्नू सानू फरमाइश भेज रहे ने मथोला पिंड तो, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर, पिंड कल्याण मलका, जिला बठिंडा तो अमृतपाल सिंह रामगढ़िया, परमिंदर सचनूर ते मनिंदर कौर। पिंड फ्रांसी, जिला हिसार तो राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी, पुष्पेंद्र कुमार डोडी ते इन्हां दे बहुत सारे साथी सानू फरमाइश भेज रहे ने। पिंड हीरा वाली फाजिलका तो सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। मलियाना सरदना मेरठ तो अनिल जैन, जैन संयम जैन, मुस्कान जैन, जीवियम जैन ते इन्हां दे बहुत सारे साथी। आओ हुण सुणदे हां सारयां दी मिली जुली फरमाइश। तलाश फिल्म दा गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी ते साथियां दी आवाज़ च।

मुलाकात। मिलो तो मिलो प्यार से, बोलो तो मीठी बात, हमारे बड़े भाग हुई तुमसे मुलाकात। मुलाकात हाय हाय हाय, मिलेगा कुछ तो दिल जो यहाँ।

0: ਇਸ ਗੀਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ 11 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ ਅਤੇ 11:05 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਸਮਾਚਾਰ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्र

0: त्रिय प्रस्ताव पारित किया है।
1: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेल लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत हो गए। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिनों में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की आशंका है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said, "The people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress." He said, "For the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace." He said, "The lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right."
3: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है, तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.

0: जी दोस्तों, तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम सौगात अपने दोस्त कमल दे नाल आकाशवाणी पंजाब दे। ते तुसी भी साढ़े वेड़े अपने फरमाइशी गीतां दी फरमाइश लैके पहुँच सकते हो। साडा नंबर है 0812-143-171। यही नंबर मिला के साढ़े वेड़े साढ़े कॉलर दोस्त पहुँच चुके ने। आओ फिर आपका कैम करते हैं उन्होंने नाल। हैलो, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: धन्यवाद
0: जी। ते दसो केड़ा गीत सुनाइए?
1: केड़ा
0: जी?
1: मावां ते धीआं।
0: हां, वाकई मावां ते धीआं वर्गा रिश्ता कोई होर हो ही नहीं सकदा।
1: हां जी, बिलकुल।
0: ते लो जी, फिर इंजॉय करदे हां गीत।

0: क्या बात है। हेलो,
1: हेलो कमल जी, सत श्री अकाल।
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: जी मनजीत कौर बोल रही हूँ दिल्ली तो। जी सुनाओ की हाल चाल है।
0: बहुत वधिया मनजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है, पूरे ढोल ढमके दे नाल स्वागत है। फिर गर्मी का की हाल चाल है दिल्ली च? पहला तो यह सुनो। क्या बात है, क्या बात है,
1: बहुत गर्मी पै रही है।
0: बिल्कुल, चलो
1: देखो बाहर नूं देखो ते गर्म गर्म लगता।
0: बिल्कुल बिल्कुल जी। और जे वैसे गर्मी ज्यादा वाजे तो बारिश भी आने वाली हुंदी है, ते एक दो दिन तक मैं लगता आ ही जाएगी, ते जिनी देर तक नहीं आंदी असीं गीतां दे जरिए ठंडक पाउण दी कोशिश करदे आ। ते दसो फिर किहड़ा गीत सुनाईए?
1: गीत सुना दो, बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रखने
0: आ। आहो, किते बदल ना लंघ जाए, ठीक है ना?
1: आहो, बदल आ जाए फिर।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: बत्ती वेख के।
0: बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी कॉल करने के लिए।
1: तुहाडा भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद जी।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। देखो बारिश पै नहीं रही ते धुप इन्नी ज़्यादा हुंदी है, ते लोकी अपने जज्बात जिहड़े है ना वो गीतां दी बरसात दे नाल ही ठंडे कर रहे ने सारा कुछ। ते आओ जी अगले कॉलर दे नाल गलबात करते हैं।
1: हेलो सर जी, सत श्री अकाल।
0: हैलो, सत श्री अकाल जी, कौन बोल रहे ने ते किहड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: सर जी, मैं रजवंत सिंह बोल रहा हूं।
0: हेलो, हाँ जी,
1: हां जी,
0: सो बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल
1: धन्यवाद
0: ढमक्के
1: है
0: दे
1: सर
0: नाल
1: जी।
0: स्वागत है। ओ रजवंत सिंह जी, तुहाडे आले पासे फिर गर्मी दा की हाल चाल है? डेरा बाबा नानक आले
1: पिछले कुछ
0: पासे?
1: ना घंटा हो गया बत्ती बंद हो, इन्वर्टर भी अजी खराब होया, दो तरवान आया हूं, जरा बड़ा औखा चमक फैला मैं,
0: हाँ, क्या
1: बहुत
0: कितना।
1: औखा बेचारा।
0: हाँ बिल्कुल, चलो फिर भी तुहाडे आले पासे थोड़ी पिंड दे विच हवा हुआ बड़ी खुली है
1: नहीं जी, अजे
0: ते।
1: बिल्कुल बंद हो ही नहीं, कोठे
0: अच्छा चलो, फिर भी खुला
1: कोठे ते
0: खुला
1: बैठे हैं। हाँ
0: मौसम तो खुला हैगा ना आले दुआले,
1: जी
0: फिर
1: हाँ जी,
0: भी
1: मौसम खुला
0: शहर
1: है।
0: वर्गी भीड़ तो नहीं ना हैगी।
1: नहीं, ये गल ठीक
0: हाँ
1: है,
0: इस करके थोड़ा जा फिर भी कुदरत दी गोद दे विच बैठे हुए हो।
1: नहीं कोठे ते बैठे हैं।
0: क्या बात है, दसो फिर केड़ा गाना सुनाइए।
1: जदों जदों नहीं बनेरे बोले काम में औखियां पाउनी है, मन
0: आहा
1: जीते जगजीत सिंह।
0: क्या बात है, क्या बात है। लो जी, और बैठे भी तुसी कोठे ते ही होए हैं,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: माड़ा बनेरे तो मंजा परे नूं कर लियो कि ओ ही ना
1: नहीं
0: होवे।
1: जी बनेरे तो मंजा परे ही है, डिगड़ा थोड़ी है नेरे
0: हाँ,
1: से।
0: मैं वही क्या कहते वही ना हो, कान का तो पता है कोई नहीं, अपना ही ना कुछ भूल भूल जावे, ठीक है कि
1: नहीं नहीं सही
0: नहीं। लो सुन दिया फिर गीत, धन्यवाद जी
1: लाइए।
0: कॉल करने के लिए।

क्या बात है जी, क्या बात है। हेलो हेलो हेलो हेलो। सो साढ़े नाल साढ़े कॉलर दोस्त जुड़े सी फोन के जरिए, पर लगता कॉल डिसकनैक्ट हो गई। तो उन्होंने लिए फिर मैं एक गीत अपने वालों प्ले करदा। उम्मीद है उन्होंने एक गीत जरूर पसंद आएगा।

0: क्या बात है जी, क्या बात है। हेलो हेलो।
1: हेलो, सत
0: हाँ जी,
1: श्री अकाल जी। दिलबाग सिंह बोल रहा। हाँ
0: सत श्री अकाल जी। दिलबाग सिंह जी, कड़ी जगह तो बोल रहे हो?
1: जी, मैं जी असि मैं ब्रिटिश कोलंबिया कनेडा तो बोल रहे। मैं तो मेरा फ्रेंड नाल असि काम कर रहे हैं। वैसे रहिंदे पंजाब तो, मुल्तान पाकिस्तान तो।
0: अच्छा जी, क्या बात है। तो
1: हाँ
0: बहुत
1: जी,
0: बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमके के नाल स्वागत है। नहीं,
1: थैंक यू जी।
0: पाकिस्तानी पंजाब दे हुण तुसी पाकिस्तानी पंजाब च रहिंदे हो जां पिछोकड़ पंजाबी पाकिस्तानी पंजाब दा सगा?
1: नहीं, मेरे नाल जेड़ा मुंडा इत्थे काम करदा वो पाकिस्तान पंजाब तो आ, मैं इंडिया तो आ, मैं मोगे तो
0: अच्छा, मोगे तो। अच्छा,
1: आ, रहिंदे
0: दो।
1: दोवे कनेडा च, असीं ब्रिटिश
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: कोलंबिया च।
0: दोनों पंजाबी, एक लहिंदा पंजाबी ते एक चढ़दा पंजाबी।
1: एक लहिंदा पंजाबी ते इक चढ़दा पंजाबी है, दोवे पंजाबी।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ते दसो फिर केड़ा गीत
1: हाँ
0: सुनाइए जी?
1: जी, दर्शाद अख्तर का सुना दो जी गाना। सानू अश्रु बहानी है फिर ओही
0: सानू परदेसियां नु याद करके, क्या बात है। ते लो जी, ते
1: हाँ जी,
0: परदेसी
1: हाँ जी,
0: सॉन्ग सुनते पए ने साडे कोलों।
1: हाँ जी।
0: ते
1: बाकी
0: लो जी,
1: सारे सुनने वाले नु सत श्री अकाल साडे दोहां वल्लों।
0: हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ते लो जी, एंजॉय करते हैं
1: हाँ
0: गीत।
1: जी।

0: क्या बात है, क्या बात है जी। दिलशाद अख्तर हुणां दा भी एक अपना ही युग सी। सो आओ अपने अगले कॉलर दोस्त नाल गलबात करते हैं। हैलो
1: जिस यार दे यार हजार होन
0: आहा,
1: ओनू अपना यार ना समझी,
0: क्या बात है।
1: जेड़ा हद तो ज्यादा प्यार करे
0: आहा,
1: ओदे प्यार नू प्यार ना समझी, जेड़ा होवे यार ते देवी हार, ओदी हार नू हार ना समझी, तेरा जितना यार गरीब होवे ओदी संगत बेकार ना समझी। सर जी प्यार भरी सत श्री अकाल जी।
0: क्या बात है जी, सत श्री अकाल जी। कौन बोल रहे ने ते केड़ी जगह तो बोल रहे ने?
1: सुखदेव सिंह बत्ती शेख जनक नगर जलंधर वालों सारे सुनने वाले श्रोतियां नू प्यार ते सत्कार भरी सत श्री अकाल जी।
0: सो बहुत बहुत स्वागत जी, पूरे ढोल ढमके दे नाल तुहाडा स्वागत है।
1: ਮਹਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਦਾ ਤੁਣਕਾ ਪਿਆਰ ਦਾ।
0: ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ।

हर साचा सिमरह पाई, साध संग सदा सुख पाइए, हर बिसर न कभू जाई। ए फरमान साध संगत विच जाके सच्चे अकाल पुरख नू सिमरन दी महिमा बयान करदा है। इसे करके प्रभु प्यार दी तांग रखन वालियां जीव रूपी स्त्रियां सत पुरशां दी संगत दी लोचा कर दियां हन, ताकि सत संगत विच जाके प्रभु सिमरन द्वारा परम गति प्राप्त कीती जा सके। ऐसी मांग गोबिंद ते, टहल संतन की संग साधु का, हर नामा जप परम गते। सर्वण करदे आं भाई गुरदयाल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

0: ऐसी मांग गोबिंद ते, टहल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते। इस शब्द गायन कीता सी पाई गुरदयाल सिंह ते उना दे रागी जत्थे ने। उत्तम संगत उत्तम होवै, गुण कौ तावै अवगण तोवै। इस वाक अनुसार उत्तम संगत करन दी ही हिदायत है, अर्थात गुरमुख जना दी संगत। गुरमत विच ए वी ताड़ना कीती गई है कि कुछ संगत तो गुरेज कीता जावे, अर्थात निंदकां दुखियां साखतां दी संगत ना कीती जावे। मते ए एक मनुखी जामा जो प्राप्त होया है उसनू किते विकारां दी मैल ही ना लग जावे। कबीर, साकत संग न कीजिए, दूरह जाइए पाग। सुनदे हां अजीत सिंह रूप तारा होरां पासों ए वार्ता।
1: साकत दा भावे रब तों टुटिया होया मनुख, जां रब्बी रहमतां तों सखणा मनमुख। शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1371 उपर भगत कबीर जी गुरमुख जना नूं ताकीद करदे ने, कबीर साकत संग न कीजिए दूर रह जाइए भाग। कबीर जी समझाउंदे ने कि गुरु प्यारे गुरमुखां नूं साकत मनुखां भाव गुरु तों बेमुख मनमुखां दा संग नहीं करना चाहीदा। गुरु नालों टुटे होए गुरु प्यार तों अणभिज बंदियां दी सोहबत नहीं करनी चाहीदी, सगों अजिहे मनुखां नूं वेखदियां ही दूर चले जाना चाहीदा है। क्यों जो बासन कारो परसी है तो किछ लागै।

ऐसे लोगन स्यो क्या कहिए, जो प्रभ किए पगत तिबाहज, तिनते सदा डराने रही है। इस शब्द गायन की तासी पाई निर्मल सिंह ते उनदे रागी जत्थे ने। मनुखा जन्म नू सफल करन वास्ते नौवें गुरुदेव अकाल पुरख दी सुध रखण दी हिदायत करदे हुए फरमाउंदे ने कि नता प्रति कटदी हुई इस औद नू बिरथा नहीं गवाउणा चाहीदा। उस अकाल पुरख नू चेते रखना चाहीदा है। प्राणी नारायण सुध लेह, छिन छिन औद कटह निसबासर, बृथा जात है देह। सरवण करदे आ भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

प्राणी नारायण सुदलेह छिन छिन औद कटै निस्बासर वृथा जात है देह। इस शब्द का गायन कीता सी भाई अमरीक सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने।

देना गहना नेना नीता माया मत कहाँ लो गारो शतर न पतर न चौर न चावर बहती जात हृदय ना बिचारो रथ ना सुना गज सिंघासन शिन में त्यागत नांग सिदारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न को दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा करत विकार दहु कर चारो मित्र न पुत्र कृतर साजन साख उल्टत जात बिरह की शार दीन दयाल पुरख प्रपूरण छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्रीपतनाथ शरण नानक जन।

ब्रह्मा दीक्षित संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंदर खोज ते गोरख तरन गगन आ।

भगती हर जनता के दर्श समावत तिसे त्याग आन को जाचा मुख दंत रसन सगल कस जावत रे मन मूर सिमर सुखदा।

का जन्म मरण दुख हो ऐसे दुख संबंधी नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सच्चे पात सहा मल जन्म जन्म सजन सच्चा पात साहु सिर सहांद जिस पास बैठे आ सोही सवनांदा वे सजन सच्चा पात साहु सिर सहांद जिस पास बैठे आ सोही सबनांदा वेसाहो सतनाम।

निमख माह निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मना तै भी उतर पारा अजामल पापी जग जाने

0: फेर बटाइया ज्ञानी बुझता है। सात जुगरा सत संतो का धर्म ग्रथ वाहो त्रित रथ जत का जोर ग्रथ वाहो काल जुगरथ गिर का कूड़ गे रथ वाहो महला पहला।
1: सम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साच रहे सबको ससमावे

और चली चंद्रावल कौन कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया विंद्रावन में रंग किया कल में वेद थर्बण हुआ ना खुदा यलो भया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे त्रिक पठानी अमल किया चारे वेद हुए सच्चे पड़े गणे तने चार विचार आओ भगत करनी सदाए तो नानक मुख अंतर पाए पड़ सतगुरु।

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथमा भगवती सिमर कै।

मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जना नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता तेना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के।

0: जल न जाए धन समान समान का जुगल चले पाए चौकन मुलन आया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओह मुआ चढ़ पया बीतक गया महला पहला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लगा लख ठगियां पैना मियां रा दिन जीना तक पाहो कतिए बाउन मटे आए कोहे बकरा रिन खाया सबको आखे पाए होए प्राणा सुटिए फिफर पाइए होर नानक तग ना टुटे जे तग होवे जोर महला दूजा
0: महला पहला ना मने पतूप जे साला ही सच सूत दरगेंद्र पाइए तगना टूट सपूत महला पहला
1: तगना इंद्री तगना नारी भर के थपे ने दाड़ी तगना पैरी तगना तगना जेवे तगना की वे तगा आपे वते बढ़ता गेवरा खते ले फाड़ करे भी आ कड़का।

पौड़ी साहिब हो दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सौ सेवक सेवा करे जिसन हुक्म मनाए सी हुक्म मनया होवे प्रवान ता कसमे का महल पाए सी कसमे पावे सो करे मदो चंदा सो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी ता दरगे पैंदा जाए सी।

0: जे महा का कर्म है कर्म पितरी दे अगे वस जानी है पितरी चोर करे वड़ी है हद लाल के मुसफिये करे नानक अगै सो मिले है जे खटे काले दे महला पहला
1: ज्यों जोर उसरना बनिया वे वरवा जूठे जूठा मुख

महला पहला जे कर सुत मनिया सब दर सुत को होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जे ते दणियन के जिया बाज ना कोई पहला पानी जीव है जित हरिया सब कोय सूत क्यों कर रखिया सूत पवेद सोए नानक सूत के बिना उतरे ज्ञान।